0: श्रुति शाडोलीकर कटकर के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: आज कुछ बातें समुद्री शैवाल की खेती के संदर्भ में। देश के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले किसान समुद्री शैवाल यानी सीवीड के जरिए अपनी आजीविका बढ़ा सके, इसके लिए सरकार कई तरह से प्रयास कर रही है। समुद्री शैवाल दुनिया भर में पाया जाता है और ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसकी कई प्रजातियों को भोजन, पशु चारा और उर्वरक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में लगभग 8,118 किलोमीटर समुद्री तटीय क्षेत्र है, जहां पर समुद्री शैवाल के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार तटीय राज्यों के मछुआरों को शैवाल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मकसद यह है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे आने का मौका दिया जाए, जिससे मछुआरों के परिवारों की आय में इजाफा हो सके। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30.1 मिलियन टन सीवीड का उत्पादन हो रहा है। इसमें से 95% उत्पादन खेती के जरिए और 5% उत्पादन प्राकृतिक तरीके से उगे समुद्री शैवाल से मिलता है। चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम प्रमुख सीवीड उत्पादक देश हैं। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्री शैवाल कई प्रकार के होते हैं। भारत में प्राकृतिक रूप से हरे शैवाल की 900, लाल शैवाल की 400 और भूरे शैवाल की 1,500 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 221 तरह की किस्मों का प्रयोग विभिन्न उत्पाद बनाने में होता है, जिनमें से 145 खाद्य उत्पाद और 110 का फाइकोकोलाइड्स उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ सीवीड ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत से महत्वपूर्ण उत्पाद मिलते हैं। उदाहरण के लिए सीवीड से हमें बायोस्टिमुलेंट मिलता है, जिसके प्रयोग से फसलों की उत्पादकता में 16-40% तक वृद्धि संभव है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कई संस्थानों ने इस पर शोध भी किया है। देश में जिस तरह से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें सीवीड से बने उत्पाद मददगार बन सकते हैं। सीवीड के उत्पादन से गरीब मछुआरों को लाभ होगा। जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ेगी, वैसे ही इसका दायरा भी बढ़ेगा। भारतीय शोधकर्ता लंबे समय से टिकाऊ खेती के तौर पर समुद्री शैवाल की खेती अपनाने पर जोर दे रहे हैं। उष्णकटिबंधीय मौसम, उथले पानी और पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण भारत के लंबे सागर तट इसके लिए आदर्श हैं। हालांकि भारत में कुछ किस्मों की ही खेती होती है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यहाँ की 60% जमीन खेती के काम आती है, लेकिन करीब 47% कृषि योग्य भूमि मिट्टी कटाव के कारण नष्ट हो रही है। मिट्टी को होने वाले इस नुकसान का लगभग एक तिहाई हिस्सा पानी से होने वाला कटाव है, लेकिन समुद्री शैवाल की खेती में पानी भी समाधान का हिस्सा हो सकता है। समुद्री शैवाल आयोडीन, विटामिन और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इनमें कुपोषण का मुकाबला करने की क्षमता है। सागर तट के पास उगने वाले समुद्री शैवाल जलवायु परिवर्तन रोकने में भी मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा ये भोजन का स्थायी स्रोत भी बन सकते हैं। भारतीय आयुर्वेद में हजारों वर्षों से इनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति में सीवीड को वो जगह नहीं मिली है जो एशिया के अन्य देशों में है। समुद्री शैवाल की खेती के फायदे इससे मिलने वाले पोषण तक सीमित नहीं हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के जरिए भोजन तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे जमीन पर दूसरे पौधे करते हैं।

0: समुद्री शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। ये कार्बन को शर्करा में तब्दील करते हैं और पानी में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। वैज्ञानिकों ने एक शोध में सीवीड की खेती की पहचान कार्बन सिंक के रूप में भी की है, जो जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को कम करने में मददगार हो सकती है। कार्बन इकट्ठा करने के अलावा सीवीड समुद्री भोजन श्रृंखला बनाते हैं। पादप प्लवक के साथ ये कई समुद्री जीवों के लिए आश्रय और भोजन मुहैया करवाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर

अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 1,000 quintals on sugar dealers across the country is effective from 1st of August this year. Under the amended provisions, a sugar dealer shall not hold any stock for a period exceeding 30 days from the date of receipt of such stock. The government said that the country has adequate availability of onion and it has begun a calibrated and targeted release of buffer stocks through Kanda Express and road transport to ensure moderation of seasonal price pressures. The Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that retail intervention efforts have expanded significantly across 19 cities, supported by the dispatch of over 30 trucks to ensure widespread availability. Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will be on a three-day visit to India beginning today. During the visit, he will hold bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi to discuss the entire spectrum of bilateral relations and regional and global issues of mutual interest. In badminton, India's leading shuttlers, including Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma, will begin their campaigns today at the China Masters Super 715 Shenzhen. Top seed Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also lead India's challenge in men's doubles, with Devika Sehwag among the other Indians in action. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहां जाने सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रानीचंगा माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज सवेरे 7 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल बृहस्पतिवार 3 तारीख को सवेरे 7 डिगलीपुर से माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड कदमतल्ला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर आज सवेरे 7 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलियान कल 3 तारीख को सवेरे 7 रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 श्री विजयपुरम से चलेगा। जलियान आज ही दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी आज ही दोपहर बाद 2:30। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलियान आज ही दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा आज दोपहर बाद 2:30 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 श्री विजयपुरम से चलेगा। जलियान कल 3 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। और अब सुनिए कल बृहस्पतिवार 3 तारीख को जाने वाले जलियानों के बारे में। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल बृहस्पतिवार 3 तारीख को सवेरे 8 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 8 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर एमवी कालीघाट कल बृहस्पतिवार 3 तारीख को सवेरे 7 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलियान अगले दिन 4 तारीख को शाम 4 कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 3 तारीख को सवेरे 6 श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल बृहस्पतिवार 3 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलियान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 3 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी

नीलक्ष्मी, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल 3 तारीख को दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा जलयान। कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा जलयान। कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी कल ही दोपहर बाद 3:30 पर। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल 3 तारीख को दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। और एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 3 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा जलयान। अगले दिन 4 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा।

महादेव की यात्रा पर कल 3 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा जलयान। अगले दिन 4 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा।

0: अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। आप प्रस्तुत हैं इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष के इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, उम्मीद वो एहसास है जो मुश्किल वक्त में भी दिल को संभाले रखता है। उम्मीद हो तो दूरियां भी छोटी लगने लगती है। किसी के लौट आने की उम्मीद इंतजार को भी खूबसूरत बना देती है, और जब उम्मीद प्यार से जुड़ जाए तो दिल बस उसी का इंतजार करता है। जी हाँ दोस्तों, आज बातें उम्मीद की। दोस्तों, कुछ रिश्ते सिर्फ दोस्ती के नहीं होते, उनमें एक दूसरे के लिए एक खूबसूरत सी उम्मीद होती है। किसी के आने का इंतजार भी अपना सा लगता है, दूर रहकर भी दिल उसी के करीब रहता है। और जब प्यार सच्चा हो तो दिल बस यही कहता है कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं।

दोस्तों, ज़िंदगी से हमें बहुत सी उम्मीदें होती है, अपने भी होते हैं जिनसे बहुत से आसरे जुड़े होते हैं। हमें लगता है कि मुश्किल वक्त में यही अपने हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन कभी कभी वही अपने हमसे बहुत दूर हो जाते हैं। फिर समझ आता है कि हर उम्मीद पूरी नहीं होती और हर सहारा उम्र भर साथ नहीं रहता।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे मिलने की चाह कभी कम नहीं होती। बस इसी उम्मीद पर जी रहे होते हैं कि एक दिन फिर मुलाकात होगी। कभी कभी दिल डरता है कि कहीं मिलने की ये हसरत अधूरी न रह जाए, इसलिए हर दिन एक छोटी सी उम्मीद के सहारे गुजरता है कि जिंदगी में एक बार फिर साथ बैठें और कहें, देखो इंतजार बेकार नहीं गया।

0: दोस्तों, उम्मीद ही तो इंसान को हर हाल में जीना सिखाती है। उम्मीद हो तो दूरियां भी कम लगने लगती है और इंतज़ार भी खूबसूरत लगने लगता है। बस इसी उम्मीद को दिल में बनाए रखिए, क्योंकि क्या पता जिस मुलाकात का आज इंतज़ार है वो कल हमारी खूबसूरत याद बन जाए। इसी उम्मीद के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाज़त।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रस्तुत कर रही थी शबाना। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस गान की 349वीं कड़ी।

ब्रह्मा तथा दशरथ प्रभु चरणों की वंदना करके सुरलोक के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब स्वयं देवराज इंद्र शोभा धाम शरणागतों को अनंत विश्राम देने वाले जगदीश्वर की स्तुति कर रहे हैं।

अभी आप रामचरित मानस गान की 349वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे जगजीत सिंह, सुरेश वाडकर और साथी, तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, वतन के गीत कार्यक्रम के तहत लीजिए सुनिए कुछ देश गान।

अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को आज शाम तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद सवेरे 7:00 सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा 7:05 पर। सवेरे 7:15 पर देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से ठीक उसी समय सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर साहित्य दर्पण के तहत आप सुन पाएंगे आशा गुप्ता द्वारा स्वरचित काव्य पाठ, साथ ही आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मन्ना डे और सीमा शर्मा। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का आनंद लीजिए सवेरे 9:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर उस्ताद अली अहमद हुसैन का हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन आप सुन पाएंगे। गीत गाता चल फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए सवेरे 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1363 कड़ी प्रसारित की जाएगी। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रलोक का आनंद लीजिए 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वानी। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर श्रोता कुछ फिल्मी गीत सुन पाएंगे। दोपहर 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे शंकर बाबू, हबीब पेंटर कव्वाल और कैसर आजाद बदायूनी। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का लुत्फ उठाइए दोपहर 1:30 पर। और दोपहर बाद 2:30 मौसम की जानकारी के बाद हमारी प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत लाइव फोन आउट कार्यक्रम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें सूचनाओं के अलावा विश्व नारियल दिवस पर वार्ता भी आप सुन पाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की पहली कड़ी प्रसारित की जाएगी शाम 4:30 पर। शाम 4:40 पर हम आपको कार्यक्रमों के विवरण से अवगत करवाएंगे। बहारों की शाम फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए शाम 4:45 पर। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम में विश्व नारियल दिवस पर DK दुरई से ली गई भेंट वार्ता आप सुन पाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर आप सुन पाएंगे कुछ आधुनिक गीत। संध्या 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में श्रीमती शिवा जॉन से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी सही पोषण देश रोशन, दर्द भरे नगमे का लुत्फ उठाइए 6:30 पर। संध्या 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत गीतों भरी कहानी कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात विश्व नारियल दिवस पर चर्चा भी आप सुन पाएंगे। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार। तत्पश्चात गौरव गान और फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम होगा सरगम रात 10:00, जबकि रात 10:00 आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर

पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: क्षेत्रेषु पारस्परिक हितस्य सहयोगमपि वर्धिष्यते। नेपालस्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उक्तवान् यत् गतसप्ताहे तिब्बत क्षेत्रात् भोटेकोशी नद्याः मार्गेण रसुवा प्रदेशं प्रविष्टः विनाशकारी जलाप्लावः वायुमण्डल परिवर्तनस्य परिणामः अस्ति। नेपालदेशे सहसा आगतस्य विनाशकारिणः जलाप्लावस्य कारणेन मृतानां संख्या 50-अधिकैकसहस्र पर्यन्तं वर्धिता अस्ति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 7.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:29। और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, हम आपको बता दें आज सवेरे 7:15 पर देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि आप ठीक उसी समय विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर साहित्य दर्पण के तहत आप सुन पाएंगे आशा गुप्ता द्वारा स्वरचित काव्य पाठ, साथ ही आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का आनंद लीजिए सवेरे 9:00।

दोपहर 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम में आप चंद कवालियों का लुत्फ उठा पाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का लुत्फ उठाइए दोपहर 1:30 पर। संध्या 6 कृषि जगत कार्यक्रम में श्रीमती शिवा जॉन से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी, सही पोषण देश रोशन। दर्द भरे नगमे का लुत्फ उठाइए संध्या 6:30 पर। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्योत्तर अंडमान जिले के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रचार समिति अध्यक्ष ने प्रशासन से मालवाहक वाहनों के वजन प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। और अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण समिति की ओर से 11 सितंबर को रेड रन 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। यह शिखर सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करेगा और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करेगा। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सके। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने कल नई दिल्ली में जल संरक्षण और सुरक्षा पर आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए एक सहयोगी रोडमैप तैयार करना था। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय श्री सी आर पाटिल ने की। मध्योत्तर अंडमान जिलों के किसानों के लिए चल रहे प्राकृतिक खेती पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कल श्री विजयपुरम स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को लागत, टिकाऊ और स्थानीय कृषि स्थितियों के अनुकूल प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने के बारे में जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि कृषि निदेशक देवव्रत बसंतिया और विशिष्ट अतिथि कैरी के निदेशक डॉ. जय सुंदर ने किया। इस अवसर पर कृषि निदेशक ने अपने संबोधन में कैरेन धान के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक की मान्यता मिली है और इसे द्वीप सुगंध पहल के तहत भी शामिल किया गया है। पहले दिन कल किसानों को फसल उत्पादन में जैविक इनपुटों के महत्व, निर्माण विधियों और उनके उपयोग की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में माया बंदर जोन और प्राकृतिक खेती समूहों के अंतर्गत आने वाले अन्य क्षेत्रों से कुल 42 किसान भाग ले रहे हैं। केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान ने आइलैंड फिशरीज एंड मरीन सर्विसेज स्वयं सहायता समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य नॉर्थ बे में समुद्री मछली पिंजरा पालन का प्रदर्शन, प्रचार प्रसार और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। कैरी के निदेशक डॉ. जय सुंदर ने समझौते के तहत सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। उन्होंने स्वयं सहायता समूह को अपने परिचालन के पैमाने को बढ़ाने, सेवाओं व लाभों तक पहुंच बनाने और पहल की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक सहकारी समिति के रूप में आगे बढ़ने का सुझाव दिया। कैरी के मत्स्यिकी विज्ञान प्रभाग के प्रमुख डॉ. एम. मुर्गानंदम ने बताया कि यह सहयोग वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता को जमीनी स्तर के हितधारकों के अनुभव और उद्यमिता के साथ जोड़ेगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. किरुबा शंकर ने पिंजरा पालन के लिए उपयुक्त संभावित क्षेत्रों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस

समिति के प्रचार समिति अध्यक्ष जी भास्कर ने प्रशासन से माइल तिलक स्थित वे ब्रिज पर मालवाहक वाहनों के वजन प्रतिबंधों के सख्त प्रवर्तन पर तुरंत पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था से मालवाहक वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और खराब सड़क बुनियादी ढांचे के कारण मध्योत्तर अंडमान में मालवाहक वाहनों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नियामक उपायों को लागू करते समय वाहन चालकों की आजीविका और आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। श्री भास्कर ने मुख्य सचिव से संबंधित प्रतिनिधि और हितधारकों के साथ बैठक कर इस संबंध में समाधान निकालने का भी अनुरोध किया। प्रात्रापुर और फरारगंज ब्लॉक में यूटी आत्मा के तहत छोलदारी में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने, मधुमक्खी कॉलोनियों के स्थानांतरण, बी बॉक्स प्रबंधन, शहद निष्कर्षण और विपणन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुप्तापाड़ा ग्राम पंचायत प्रधान दुर्लभ दास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर कृषि सहायक निदेशक ने किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय उत्पन्न करने वाली गतिविधि के रूप में मधुमक्खी पालन के महत्व और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कृषक मित्रों की क्षमता का निर्माण करना था, ताकि वे संसाधन व्यक्तियों के रूप में गांव के अन्य किसानों को मधुमक्खी पालन के तकनीकों के बारे में जानकारी दे सके। समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण समिति की ओर से लोगों के बीच एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 11 सितंबर को रेड रन 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह रेड रन पुरुष और महिला श्रेणियों में 17 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए खुली है। यह दौड़ अंडमान क्लब से शुरू होकर गर्ल्स स्कूल फ्लैग पॉइंट मजार पहाड़ से होते हुए उसी मार्ग से वापस अंडमान क्लब पर समाप्त होगी। प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मैराथन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 9 सितंबर तक खुला रहेगा। इच्छुक प्रतिभागी गूगल फॉर्म लिंक या QR कोड को स्कैन कर पंजीकरण कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन पंजीकरण करने में असमर्थ है, वे मौके पर पंजीकरण कर सकते हैं। सभी प्रतिभागियों से सुबह 5:30 बजे तक नेताजी स्टेडियम में रिपोर्ट करने को कहा गया है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी के जल संरक्षण एवं सुरक्षा पर विभागीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने अपनी बड़ी खबर बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। इसके अलावा अखबार ने जीपी पंत अस्पताल में दुर्लभ बॉम्बे रक्त समूह की पहचान होने के समाचार को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने समाज कल्याण विभाग की ओर से शहीद और स्वराज द्वीप में दिव्यांगजनों के लिए UDID पर जागरूकता सह पंजीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार को सचित्र प्रकाशित किया है। इन्फो इंडिया ने आर्मी अधिकारियों द्वारा डिब्रेट में राष्ट्र निर्माण और जिम्मेदार नागरिक विषय पर जागरूकता सत्र, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने सांसद द्वारा नया गांव का दौरा कर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने के समाचार को प्रमुखता से छापा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्योत्तर अंडमान जिले के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रचार समिति अध्यक्ष ने प्रशासन से मालवाहक वाहनों के वजन प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। और अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण समिति की ओर से 11 सितंबर को रेड रन 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जब भी देश की बात आती है, हमारे दिलो दिमाग में जोश और देशभक्ति भर आती है। फिर तो देश और उनके सम्मान के आगे कुछ नहीं सोचता और फक्र से हमारा सर ऊपर उठाकर तिरंगे को सलाम करता है। दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना, इसका जब तक दिल में जान है।

श्रोताओं, देशभक्ति वह भावना है जो हमें अपनी मातृभूमि से जोड़ती है। देशभक्ति का मतलब देश के प्रति प्रेम और उसकी भलाई के लिए जीना होता है। देश की खातिर मर मिट जाएं, ये प्रण आज हम अपनाएं। सरहद पर जो वीर खड़े हैं उनकी शान बढ़ाएं हम। रक्त की हर बूंद से अपने तिरंगे को सजाएं हम। एकता और अखंडता की मिसाल से अपने देश को आगे बढ़ाएं हम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश रागिनी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 में है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: श्रोताओं, तकदीर तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलता है, छोड़कर सारे बहाने मेहनत की राह पर चलता है। जो ठोकरों से भी सीखता है बस वही जिंदगी में संभलता है। जो अंधेरों से डरता नहीं वही सितारा बनकर चमकता है। जी हाँ श्रोताओं, नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और आज के इस सफर में मैं हूँ आपके साथ सुनीता। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं साहित्य दर्पण के तहत आशा गुप्ता द्वारा स्वरचित काव्य पाठ।
1: मेरी पहली कविता जिसका शीर्षक है शायद कोई सपन। आई थी मैं जब सपनों में तुम गहन नींद में सोए थे, अपनी पलकों के चिलमन में अपनी दुनिया में खोए थे। धीरे धीरे आई थी पास तेरे और बालों को सहलाया था, फिर माथे पर उंगली फेरी थी, एक स्पर्श चिन्ह लगाया था। तुम हौले से मुस्काए थे, शायद कोई सपना देखा था या मैं ही थी सपने में भी, तुमने बाहों में घेर रखा था। बाहों में मैं ऐसे झूल गई जैसे अब आगे रास्ते गुम हो, तुम्हारी सांसों में भूल गई ये मैं हूँ या कि तुम हो। कई पल ऐसे ही गुजर गए, हुए होश नदारद उस पल के, फिर रात कुनमुनाई सी रह गई हम दोनों से जल के। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, कुछ ऐसे ही शब्द गूंजे थे, मेरी कानों में कोयल ने मीठे स्वर में कूके थे। एक राग बह चली जैसे वो हरित हुआ जो सूखा था, कुछ ऐसे ही स्वर तुमने मेरे कानों में जब फूंका था। चाहा था जो उसका होना उसमें ही सब विलीन हुआ, मन बगिया का कोई कोना जैसे तम विहीन हुआ। न मैं थी और न तुम थे, बस हम ही हम रह गए वहाँ, बस एक प्यास थी सीने में, प्रेम रस में डूबा एक जहाँ। मेरी दूसरी कविता है महाभारत अंतस का। कुछ काम ना हो तो सो जाना सबसे अच्छा उपाय होता है, कोशिश करती हूँ स्वस्थ नींद ले लूँ, दिमाग में जड़ता है छाई, चूल्हा चौका दहक कर शांत पड़े हैं, साहित्य लाचार द्रौपदी बनी हुई है और संस्कृति बाजार में नीलाम हो रही है। अपने पास बचा क्या? हम ऐसे युधिष्ठिर हैं जो बिना चपड़ खेले ही दांव हार कर बैठे हैं, अपना बलदल किसे दिखाएं? ना मैदान है, ना अस्त्र शस्त्र और ना अवसर। वास्तव में इन दिनों रचा जा रहा है अंतस में एक अनोखा महाभारत, एक ऐसा महाभारत जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति भूमिका निभा रहा है। अलग अलग पात्रों में उगते सूरज को हाथ में उठाए वो रोज निकलता है,

किरणें कुंद सी चिपकी रहती है उसी सूरज से, फैले तो उजाला हो, कोई झरोखा खुले, मार्गदर्शक नयन पथरीले पग में साथ चलें। सुबह दोपहर में ढलती है समय के साथ, हाथ जलने लगते हैं, आग का गोला उठाए सूरज फिर से काला पड़ने लगता है। शाम सितारों के लिए मचल कर जब रात के पास भागती है ना, तब यही छलिया सूरज हथेलियों से उछल कर आकाश में चिपक जाता है चांद बनकर। तब तो बड़े मज़े से चांदनी रात को रंगीन करती है, और मैं खाली हाथ लिए कभी उस चांद को और कभी अपने अंधेरे को देखती रह जाती हूँ। फिर मेरे भीतर का महाभारत ढलती शाम के उद्घोष पर जड़ हो जाता है स्वयं ही युद्ध के ठहराव के साथ। मेरी तीसरी कविता है स्त्री होने का अर्थ। बहुत होते हैं दिन रात, शाम और सुबह, बहुत होते हैं एहसास, इंतज़ार और सपने, इतना कुछ फिर भी नहीं बचा पाते हम जीवन में सूक्ष्मता के वे अनमोल क्षण। बहुत होती हैं बातें मुलाकातें, बहुत होते हैं चाहतों के वादे, और तब भी सरक जाता है हौले से समय आगे आगे। क्या तुमने जाना था या मैंने ही पहचाना था, वक्त एक दिन चोर भी हो जाएगा और बीच का सीमित सा लम्हा हमारी ही नज़रों से खो जाएगा। कई सवालों और जवाबों में होगे, कई बेसबब के ख्वाबों में होगे, क्योंकि तुम्हारे पास का वक्त हर दम व्यस्त ही रहता है, तुम्हारा हर पल सबल होता है। मैं परिधि की जोगन, मैं समय का यौवन, बाट जोहते जोहते जो एक दिन ढल ही जाता है, पिघल जाता है या फिर हिम बन जाता है। कई बार होता है ऐसा कि स्वयं के माया जाल को काटना चाहती हूँ अहम से, और कई बार ऐसा भी होता है कि मेरा अहम ही मुझे तोड़ देता है। कई बार समझाना भी होता है, फिर कई बार हार जाना भी। तुमसे नहीं, कतई नहीं, बस अपने आप से, अपने हर एहसास से। बंधे होने का सुख कभी लगता है जैसे दुख बन गया हो, या कभी अटकती सी सांसें जीवन का रुख बन गया हो। ये कौन सा रास्ता है, किस राह पर आ निकली हूँ, उठते गिरते जीवन को संभालते संभालते यूं ही। हो सकता है मेरी बातों से तुम्हारा मर्म आहत ना हो, या ये भी हो सकता है ये बातें उतनी सार्थक ना हो। शायद यही सत्य है, न जाने क्यों अब लगता है पुरुष होने की परिभाषा तुम समझा नहीं सकते, और ना मैं स्त्री होने का अर्थ बदल सकती हूँ। मेरी चौथी व अंतिम कविता है नौ रूप। नर की प्यारी नारायणी तुम जगदम्बा तुम जननी हो, जो तुलसी का सम्मान करे, जो देवी होने का मान भरे, प्रकृति पर नेछावर होने वाली तुम रुद्र प्रिया रुद्राणी हो, स्वयं सहकर हर स्थिति हर दुख, पहुंचाती रहती हो सबको सुख, बनकर बट वृक्ष छाया देती तुम तपोवन की तपस्विनी हो, सुचिता मृदुला तन और मन, बहती ओज की कोई किरण, आलोकित खंड खंड करती तुम दिव्य रूप दिव्यानी हो, तुम विश्व रूप आराध्य बनी, गौरव शांति का साध्य बनी, कष्टों को हंसकर सहने वाली तुम ब्रह्म स्वरूप ब्रह्माणी हो, वात्सल्य क्षमा की तुम देवी, कोमल निर्मल है तेरी छवि, सब पर करुणा करने वाली तुम काव्य रूप कल्याणी हो, तुम सर्वलोक आलौकिक हो, तुम नौ देवियों में एक हो, अर्थ मोक्ष अविजित तुम, शत्रु हंता हो कात्यायनी हो, घन काले कितने भी छाए, कांटों से भरी

0: हो चाहे राहें, हर परिस्थिति में जो डटी रही, तुम भय विमुक्त भवानी हो। तुम अन्नपूर्णा चैतन्यमयी, त्रिलोक पूज्या अक्षय दात्री, दैन्य दुखों को हरने वाली तुम शिव शक्ति शिवानी हो। मृदुभाषी व्यवहार कुशल, तुम सुहासिनी करती मंगल। माया रूपेण महिमा तेरी, तुम सिद्धि सिंह वाहनी हो। फिर क्यों हम कमजोर बने, मुखरित हूं ना मौन रहें। नव रूप हमारे भीतर है, कौशल्यमयी सुखदायिनी हो। नर की प्यारी नारायणी तुम जगदम्बा तुम जननी हो।
1: अभी आप साहित्य दर्पण के तहत आशा गुप्ता द्वारा स्वरचित काव्य पाठ सुन रहे थे। श्रोताओं, और अब सुनिए आज के दिन की खास बात। श्रोताओं, हर वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नारियल के महत्व, उपयोगिता और नारियल की खेती को बढ़ावा देने के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। नारियल को जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फल, पानी, तेल, पत्ते, तने और रेशों का अनेक प्रकार से उपयोग होता है। विश्व नारियल दिवस हमें नारियल के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी महत्व को समझने का अवसर देता है।
2: ले लो ना नारियल।

0: अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। फिल्म का नाम था अपना देश। श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद भी।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं मधुश्री की आवाज़ में बाहुबली 2 फिल्म का ये गीत। बोल एम एम मनोज मुंतशिर के हैं, वधुन बनाए हैं MM करीम ने।

श्रोताओं, बीते कल को सीख बनाकर आज को संजोना जिंदगी है। हर पल में खुशियां ढूंढकर मुस्कुराते रहना जिंदगी है। गम के साए में उम्मीदों से नाता जोड़े रहना जिंदगी है। छोटे छोटे ख्वाब बुनकर आगे बढ़ते रहना जिंदगी है। जी हाँ श्रोताओं, इसी विचार के साथ मैं सुनीता आप सबों से विदा लेती हूँ। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, सुप्रभात।

0: coming in the mind.
1: अभी आप गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों के पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
1: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी।

0: समाचार दिल्ली।
1: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, ज़िरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
5: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
6: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी
5: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद

0: नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र। एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है, हिंदुस्तान में है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में

0: भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिन्यूज कॉल टू एम्ब्रेस स्वदेशी गुड्स एंड अवॉइड अननेसेसरी परचेज ऑफ गोल्ड एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स अब्रॉड। Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran, explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to

श्रोताओं, इस समय आप सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत चंद नगमों का आनंद ले रहे हैं। अभी आप मन्ना डे की आवाज़ में चंद नगमे सुन रहे थे, और अब आइए सुनते हैं सीमा शर्मा की आवाज़ में चंद नगमे।

अभी आप सीमा शर्मा की आवाज़ में चंद नगमों का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे की 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं वो कौन थी इस फिल्म के एक गीत से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ों में फिल्म वारिस का ये गीत बोल वर्मा मलिक के हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: सीमा, सीमा,
2: उठो।
3: क्या हुआ?
2: चेकअप के लिए जाना है ना।
3: सोने दो ना।
2: उठो।
3: अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा?
4: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV

0: संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।
1: समय का मूल
2: HIV पे कंट्रोल।
0: गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।
3: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में तैयार मेरा साया इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, बोल राजा मेदी अली खां के हैं।

अपेश है साहिर का लिखा एवं जयदेव का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हम दोनों।

अभी आप लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था राजकुमार। और अब अंत में सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में असली नकली इस फिल्म का ये गीत।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक

0: FBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद अली अहमद हुसैन का हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन। तो लीजिए सुनिए उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथियों का शहनाई पर बजाया राग तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप उस्ताद अली अहमद हुसैन का हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 10 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म किसना से। आवाज़ें हैं सुखविंदर सिंह, शैजा, इस्माइल दरबार और आयशा की।

श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ों में अभी आपने सुना सिंगम फिल्म का एक गीत, बोल स्वानंद किरकिरे के थे व संगीत बत किया था अजय अतुल ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की, बोल प्रवीण भारद्वाज के हैं व धुन तैयार की डब्बू मलिक ने।

और अब लीजिए सुनिए चक दे इंडिया फिल्म का एक गीत, आवाज़ है हेमा सरदेसाई की। जयदीप साहनी की लिखे इस गीत को संगीत से सजाया सलीम सुलेमान ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

श्रोताओं, अगला गीत है फिल्म कमांडो अ वन मैन आर्मी से। आवाजें हैं ध्रुव सांगरी और साथियों की। मयूर पुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया मन्ना शाह ने।

दाग दी फायर। अभी आपने सुना इस फिल्म का एक गीत, आवाजें थी कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में इतिहास फिल्म का एक गीत। दिलीप सेन समीर सेन के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा समीर ने।

सलामी इश्क। और अब लीजिए सुनिए इस फिल्म का एक गीत, आवाज़ें हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला की। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए दी ट्रेन फिल्म के गीत शिल्पा राव और मिथुन की आवाजों में। सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया मिथुन ने।

मिथुन और शिल्पा राव की आवाज़ों में अभी आपने सुना दी ट्रेन फिल्म का एक गीत, और इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1362वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, एआई और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके

0: संदेश।
1: गांव गणेश थाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं। ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
1: उनके जीवन संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और एनआर प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
0: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
1: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
1: जी
0: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
1: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
0: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
1: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
1: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहां कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहां के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
0: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
1: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
1: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: श्रोताओं, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
1: जी।
0: सुविचार भेजना आसान है लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
1: सुविचार जरूर भेजें लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।
2: Little Long Changla returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Long Changla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
3: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
4: Yes, let us play.
2: She tied a scarf over

0: on Shangla's eyes.
1: Now, tell me, what do I hold in my hand?
2: How can I? My eyes are closed. I can't see.
1: You can find out. Try it. What do I hold?
0: Om Shangla touched it.
2: It is something soft. A flower.
1: Yes. But what flower is it? Smell it.
2: It is a rose.
1: Good. Now try another thing. What do I hold?
2: I know. It is the bell. The small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava.
0: Om Shangla took the bell and shook it herself.
1: Smart girl. What do I hold now? Do you know?
0: Om Shangla touched it.
2: It is a glass.
0: She put one finger slightly into the glass.
2: A glass of water?
1: Are you sure? It could be milk or juice.
0: Om Shangla tasted it.
2: Oh, it is not water. It is orange juice.
1: Good girl. Now, I will remove the scarf. You must tell what is in front of you.
0: She took off the scarf. Om Shangla blinked and looked at her.
2: It is you, Ava. I see you. That was a wonderful game, Ava.
1: So, Om Shangla, if a child cannot see, there are other ways of finding out things. But the child may have some difficulties. I hope all of you will be friends with the new boy.
2: Yes, Ava.
1: Good girl.
0: Om Shangla calls her mother Ava. What is the word for mother in your mother tongue? Close your eyes. Imagine that when your eyes are closed, how would you identify water, flower, sugar, direction of a clapping sound?
1: Note to the teacher. Sensitize children to the challenges faced by the differently abled.
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम Seeing Without Seeing.
4: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई. मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना. हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ.
5: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया.
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है.
7: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो. सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं.
3: और इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता.
8: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं. कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है.
9: साथियों नमस्कार.
10: नमस्कार साथियों,
9: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति. शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता.
10: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी. ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी. तो आइए सुनते

0: ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
0: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनविच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनविच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनविच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनविच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ।
4: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना,
5: 13, 12, 11। ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो?
5: 11, 10, 9। ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था।

0: जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
1: जॉनसी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
2: 6, now it's 6, 5, 4, oh!
1: जॉनसी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो?

0: शांसी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो
1: शांसी। Only four.
0: मेरी तरफ देखो।
1: Sue, only four. Oh, अब सिर्फ तीन बचे हैं।
0: क्या तीन बचे हैं? What's three, dear?
1: तीन पत्तियां।
0: पत्तियां?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
0: हाँ, हाँ?
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
0: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब तीन पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
0: क्या जॉनसी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: हाँ
1: सू, अब सिर्फ तीन पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओह जॉनसी।
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: टू, ओह, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये

0: कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
2: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ,
2: हाँ,
3: मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: हाँ। दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
3: ये लो कॉफी पियो।
2: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
3: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
2: ओह गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
3: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
3: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,

0: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस।
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सू,
0: उन्होंने बना दिया,
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सू, मास्टरपीस।
0: हाँ,
1: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1363वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म झूम बराबर झूम से। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की। गुलजार की लिखी इस गीत को संगीतबद्ध किया शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना डार्लिंग फिल्म का ये गीत। आवाजें थी अदनान सामी और तुलसी कुमार की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था प्रीतम ने। श्रोताओं, अगला गाना है क्रिश फिल्म से।

के और श्रेया घोषाल के गाए फिल्म ओ सनम दी किलर फिल्म का केस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्देस दोम्ब्रोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों के बचाव दल, विशेष उपकरणों और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली एनसीआर में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 76,396 पर, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852 पर पहुंच गया। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उधर बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मतलब के सब यार, यहाँ तक के जिंदगी में माता कहे कि मेरा प्यारा बेटा, और तेरिया कहते हैं कि राजा मेरा, लेकिन काल का हो जब सर पर।

ये वो घड़ियां हैं जब साया भी पीछा छोड़ देता है, अजीजों अकरबाओं खेश तक बन जाते हैं रहजन, खुदा महफूज रखे खून भी हो जाता है दुश्मन।

सर, तो इत्तफाकन शेर आया हो के बेदम प्यास से, मौत ने घेरा शिकारी के वो निकला पास से, देखकर फौरन चढ़ाई उसने फिर अपनी कमा, तीर चिल्ले में रखा और सर का बांधा, तब निशान था निशाना तीर का या मौत का पैगाम था, तीर फौरन जाके प्यासे शेर के सर में लगा, शेर घबरा करके भागा।

मौत ने पाई फतह और जिंदगी रुखसत हुई। शेर ने की लाख कोशिश जान बचाने के लिए, पर खून दुश्मन बन गया रास्ता बताने के लिए। ऐ हबीब

श्रोताओं, महफिल कव्वाली कार्यक्रम के तहत अभी आप शंकर शंभू, हबीब पेंटर और कौसर आज़ाद बदायूनी की आवाज़ों में चंद कव्वालियों का आनंद ले रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। नमस्कार श्रोताओं, दोपहर की सुहानी घड़ी में आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं श्री विद्या और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, गीतों की दुनिया भी कितनी खूबसूरत होती है। कभी कोई गीत पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है तो कभी किसी अपने तक दिल की बात पहुंचा देता है, और जब गीत अब आपकी पसंद का हो तो उसकी मिठास और बढ़ जाती है। और अपने मनपसंद गीत की बोल, फिल्म का नाम और अपना नाम पता लिखकर हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर 9474234000 पर। तो चलिए श्रोताओं, आज के संगीतमय सफर की शुरुआत करते हैं आपकी पसंद के पहले फिल्मी पैगाम के साथ। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म पत्थर के सनम से। भेजने वाले श्रोतागण हैं दिल्ली वाले पिंगा वाले चौक से, जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत और धर्मवीर जी, और धनत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि व नोखे।

कुमार की और पसंद करने वाले श्रोता हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुण वर्मा, आसाम से हितेंद्र दास, पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका, पद्मा टॉकीस नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगला बेन शाह और राजेंद्र शाह।

अगली फरमाइश हमें आई है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और रिया परिहार का और नंदकिशोर घटे। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का। ये सारी सुनना चाहते हैं मेरा साया फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये गीत। और सुनने की इच्छुक पंथ श्रोता हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी।

0: lakh rupee at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम के आखिर में लीजिए सुनिए अक्सर फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है के और सुनिधि चौहान ने, और पसंद करने वाले श्रोता हैं मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी गर्वी।

तो श्रोताओं, गीतों और आपकी पसंद से सजा आज का ये सफर यहीं तक। उम्मीद है आपके नाम फिल्मी पैगाम के माध्यम से आज की हमारी ये प्रस्तुति आपके दिल को जरूर छू गई होगी। आप भी अपने किसी प्रियजन के नाम एक खूबसूरत फिल्मी पैगाम भेजना चाहते हैं तो अपने पसंदीदा गीत की बोल, फिल्म का नाम और अपना नाम पता हमें व्हाट्सएप कीजिए 9474234000 पर। फिर मिलेंगे एक नई मुलाकात में नए पैगामों और आपकी मनपसंद धुनों के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम। और अब दीजिए अपनी दोस्त श्री विद्या को कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर की 2 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पहले अंग्रेजी और उसके बाद हिंदी में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का पांचवां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृत

0: वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
1: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं, और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
2: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री राडोस्लाव सियोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाक

0: घर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखें अपडेट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
2: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
3: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनूघाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चुल्स को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग

और तोनिचा साहिंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, जबकि मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि खराब मौसम के चलते हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिस कारण समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ये थी मौसम की जानकारी।

32 मिनट हुए हैं अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3
1: विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 100.9 विविध भारती FM श्री विजयपुरम और समय हो चला है दोपहर की 2:34। मैं हूं श्री विद्या और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स में। दोस्तों, अगले कुछ समय तक हम करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, जानेंगे आपका हालचाल और फ़ोन के माध्यम से जुड़ेंगे अपने श्रोताओं से। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत और अपनों के साथ खूबसूरत मुलाकातों का सिलसिला हेलो डियर फ्रेंड के साथ।

श्रोताओं, आइए बात करें आज के हमारे पहले श्रोता के साथ। हेलो डियर फ्रेंड। हेलो हेलो हेलो मले जी, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? श्रोताओं, एक बार फिर इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक सुनिए हमारी पसंद का ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: हेलो
0: जी, हमारी बात हो रही है मलय जी
1: जी।
0: से।
1: हाँ,
0: अपना परिचय दीजिए।
1: मैं कोलकाता में रहता हूँ। पहले

0: वो पूर्णिया में था
1: जी
0: 10 साल, और वहाँ मेरा सर्विस लाइफ शुरू हुआ था।
1: अच्छा, यहाँ
0: तो मेरा
1: सर्विस करते थे, तो अभी आप क्या करती
0: जी,
1: हैं? घर पे
0: अभी मैं
1: रिटायर हो
0: रिटायर हो
1: गए?
0: गया, अभी
1: जी जी
0: रिटायर लाइफ गुजारता हूँ। जी
1: ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं आकाशवाणी श्री
0: जी
1: विजयपुरम के साथ।
0: जी जी जी
1: जी मले जी,
0: मैंने बोल,
1: सबसे पहले गाना बता दीजिए एक बार फिर।
0: हाँ मेरा गाना वो खामोशी फिल्म से, वो
1: हाँ
0: शाम कुछ अजीब सी,
1: जी, ज़रूर सुनवाएंगे। और
0: किशोर
1: कुछ
0: कुमार।
1: बताइए अपने बारे में, आपकी लास्ट पोस्टिंग आपने बताया यहाँ पे
0: हाँ
1: पुरंदर
0: लास्ट
1: में, आप
0: पोस्टिंग है,
1: थे
0: मैंने
1: श्री विजयपुरम में।
0: 76 से 78 में वहाँ ज्वाइन किया था इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ में, और वहाँ से मैं
1: जी,
0: 86 में
1: किसमें,
0: ट्रांसफर
1: किस
0: हुए।
1: डिपार्टमेंट में थे आप, कहाँ पे सर्विस?
0: मैंने इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ में था,
1: जी जी
0: हेड
1: जी
0: पोस्ट ऑफिस में।
1: पोस्ट
0: वहाँ
1: ऑफिस में थे।
0: से
1: हाँ
0: जी, वहाँ से मैं कलकत्ता आ गया 86 में, 1986।
1: जी जी
0: उसके बाद तो 2018-19 में रिटायर हो गया, अभी रिटायर लाइफ जा रहा हूँ।
1: कैसा चल
0: और
1: रहा है आपके रिटायरमेंट के बाद का आपका
0: अभी
1: लाइफ?
0: ठीक ही चल रहा है,
1: जी जी
0: मजे से चल रहा है।
1: क्या
0: और
1: करते
0: लास्ट
1: हैं आप अपना
0: सुबह
1: समय बिताने के, मतलब एक
0: समय बिताने के लिए अभी तो दोस्तों के साथ घूमता हूँ,
1: जी
0: और
1: जी
0: सारा इंडिया घूमता। अभी
1: वहाँ जाके,
0: नेक्स्ट मंथ
1: कोलकाता में जाके आपको बहुत सारे मित्र मिल गए हैं
0: जी, मेरा
1: अब?
0: तो घर ही है यहाँ कोलकाता
1: अच्छा,
0: में, यहाँ ही मैं पैदाइश हुआ है
1: अच्छा, आप जॉब के लिए सिर्फ यहाँ आए थे, सर्विस के लिए?
0: जी। वहाँ पर तो मेरा बहन थी, और बहन के घर में गया था, वहाँ से जॉब लग गया, उसके
1: अच्छा
0: बाद ट्रांसफर लेके मैं आ गया
1: जी, तो आपका वापस यहाँ घूमने
0: कोलकाता
1: आना सब होता है क्या?
0: जी। लास्ट 24 में गया था, 2024 में मैं गया था, 2 महीना था।
1: जी जी
0: मेरा जो रिलेटिव है सब उनके घर था, फिर 2 महीना बाद फिर आ गया,
1: तो आप
0: फिर जाने का
1: अंडमान
0: कोशिश
1: से
0: कर
1: जुड़े
0: रहा हूँ।
1: रहने के लिए आप यहाँ का चैनल सुनते हैं आप?
0: जी, चैनल सुनता हूँ, और वहाँ तो सब कुछ मतलब भूलना नहीं, भूला नहीं ना अब तक, क्योंकि
1: जी, कैसा लगता है
0: मेरा
1: आपको?
0: बहुत पॉपुलर से तो मेरा मतलब रिश्ता है ना, वो रिलेटिव से है, और मेरा तो सर्विस लाइफ शुरू हुआ, मेरा
1: जी
0: जो यंग लाइफ तो मेरा वहाँ से शुरू हुआ है।
1: जी मले जी, आपको सुनवाएंगे आपको पसंद का गाना, पर आखिर में एक बात पूछना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी को अपने अनुभव से क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
0: युवा पीढ़ी को असली में बात यह है, अभी थोड़ा सा जो चल रहा है एरोगेंसी चल रहा है, और युवा पीढ़ी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं,
1: जी जी
0: और अभी जो है वो सीनियर को
1: ऐसा,
0: पूरा
1: आप
0: रेस्पेक्ट
1: आपके
0: दे।
1: हिसाब से किस वजह से आजकल के बच्चे ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्या?
0: असली में ज्यादा फ्रीडम हो गया
1: जी जी
0: इसके लिए
1: कहीं ना
0: हम
1: कहीं
0: लोगों
1: फोन
0: तो
1: भी बिगाड़ रहा है बच्चों को।
0: जी, और हम लोगों के टाइम में तो मेरा जो पेरेंट्स था
1: जी
0: उन्हीं का बात तो हम लोग सुनता था, लेकिन आजकल जो है सब तो ज्यादा फ्रीनेस हो गया ना,
1: जी जी
0: इसीलिए सब कुछ मिल जाता है,
1: जी
0: इसीलिए तो इतना हो गया। लेकिन उन लोग थोड़ा पेरेंट्स को संभाले, और
1: जी
0: थोड़ा जो सीनियर को थोड़ा रेस्पेक्ट दे, बस यही
1: संदेश है
0: मेरा
1: आपका।
0: राय है।
1: जी जी बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने। तो मले जी, आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे इसी तरह। तो अब सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत, खामोशी फिल्म
0: हाँ
1: से
0: हाँ
1: है।
0: हाँ जी, थैंक यू।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो
1: जी
0: हेलो जब्बर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
1: जी जी
0: कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: बसुपट्टी
0: जी, तो सबसे पहले बता दीजिए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: बता दिया
0: जी, आपने जो बताया वही सुनना चाहते हैं। अमावस फिल्म का गीत है जब से मेरा दिल है गीत के बोल। तो जब्बार जी, कुछ अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं?
1: बताया नहीं, प्राइवेट काम करते हैं।
0: अच्छा, तो कब से जुड़े हैं? आपने ड्राइविंग कहा था
1: जी,
0: क्या हम आपसे कुछ हम जानना चाहेंगे कि आजकल बढ़ती ट्रैफिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: क्या बताने, इतना ट्रैफिक है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। गाड़ी ज्यादा है, रोड कम है।
0: अच्छा, और आपको अपने काम में सबसे ज़्यादा क्या अच्छी बात आपको क्या लगती है? आप गाड़ी चलाते वक्त आप FM सुनते हैं क्या?
1: नहीं, कभी कभी सुनता है सर।
0: जी, कैसा लगता है आपको प्रोग्राम?
1: ठीक है।
0: ठीक, तो जब्बार जी सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: जी जी

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। जी, हमारी बात हो रही है पूरन वर्मा जी से।
1: जी, मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं
0: जी
1: आपसे बातचीत कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट जयपुर, राजस्थान, गांव का नाम अंजुमेल बगला। थैंक
0: जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: यू मैडम।
0: जी, आपसे बहुत दिनों से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ कारणवश कॉल कट हो जाता है।
1: हाँ जी मैडम।
0: जी, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। बताइए पूरन वर्मा जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: जी मैडम, आपको और तमाम श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो उसकी हार्दिक शुभकामना मैडम।
0: जी, कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को है, तो
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम।
0: आप
1: आपके
0: पहले
1: उधर
0: से
1: कैसे मनाया जाता है मैडम?
0: शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी, आपके उधर कैसे मनाया जाता है मैडम?
0: हमारे यहाँ में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, शायद आपके वहाँ के उतना तो नहीं पर भी बहुत अच्छे से ही मनाते हैं।
1: जी, हमारे यहाँ
0: और आपके वहाँ
1: मैडम,
0: पे कितनी धूमधाम से मनाते हैं?
1: जी मैडम, यहाँ भी मनाया जाता है। पहले से तैयारी मंदिरों में हो जाती है और उसके बाद शाम को, रात को 1-2 बजे तक भजन भाव होता है मैडम। वो सभी मिलके भजन गाते हैं, सत्संग होता है मैडम। जी
0: जी, और कितने दिनों से शुरू चलता है ये?
1: ये मैडम, जैसे मंदिरों में अगर बड़ा मंदिर है तो उसमें 15-20 दिन से तैयारी हो जाती है कि मंदिर में साफ सफाई करना है, कैसे उसको सजाना है। अगर छोटा छोटा मंदिर हो गया तो फिर 1-2 दिन से तैयारी होती है, फिर उसमें भजन भजन भाव का होता है, तो रात को 9 बजे से ही चलता है वो भजन भाव। सभी मिलजुल कर आते हैं, पूरा गांव में से जाते हैं मैडम मंदिर पे।
0: जी,
1: जी, तो आज फिल्म का नाम उसी पर है, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है तो उसी पर फिल्म का नाम है मजबूर, और उसमें कृष्ण जी का भजन है, वो मैं सुनना चाहूंगा।
0: जी, आपको सुनवा रहे हैं मजबूर फिल्म का ये गीत।
1: और कुछ साथियों को याद कर सकता हूँ?
0: जी जरूर, जी जरूर।
1: जी, सबसे पहले तो आप है
0: धन्यवाद।
1: और स्कूल लाइन विजयपुरम से पूर्णिमा मैडम है,
0: जी,
1: और शिमला से राकेश है, गोल्डी बाई है, अमल है, बिमल है, शिवा लवाड़ है, धर्मवीर जी है, और जितने भी कॉलर आप किससे बातचीत करेंगे आखिरी कॉलर तक, उन श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ मैडम ये गाना।
0: जी पूर्ण वर्मा जी, सुनिए आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून, हमारी बात हो रही है मोनिका जी से।
1: जी मैडम, मैं सतन घाई से मोनिका बोल रही हूँ।
0: कैसी हैं मोनिका जी? बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुन रहे हैं हम।
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ मैडम, आप लोग सब कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। इन दिनों कहाँ थी आप, क्या कर रही थी?
1: घर पे ही थी मैडम, आप
0: और
1: लोग कॉल नहीं करते थे, हमें भूल गए।
0: अच्छा हाँ, सबकी बारी आते आते शायद
1: जी
0: अभी आपका अभी लगा है।
1: जी सबसे पहले तो मैं जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आपको
0: आपको भी
1: और
0: हमारी
1: सुनने
0: ओर
1: वाले
0: से,
1: सभी दोस्तों को।
0: हाँ आपको भी हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। और
1: जी
0: बताइए, इस दौरान आप रेडियो तो सुनती होंगी आप?
1: जी जी जरूर।
0: बाकी प्रोग्राम सब सुन रही थी इतने दिनों से।
1: जी मैं डेली सुनती हूँ मैडम।
0: जी, और बता दीजिए गाना कौन सा है आज के लिए, कौन सा गीत सोच रखा है आपने?
1: अफसाना प्यार का मूवी का याद तेरी आती है,
0: जी, और
1: दोस्तों के
0: बताइए।
1: नाम लेना चाहती हूँ।
0: जी, हाँ बताइए।
1: सबसे पहले तो आप है आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों के साथ, मेरी भांजी दीपल है, दीपक दस्तर बुधनी मैडम, और शादीपुर से सप्तमी कुंडू दीदी है, विम्बलियन से शिप्रा है, स्कूल लाइन से पूर्णिमा मैडम है,
0: जी
1: बमकर
0: जी
1: से जया दीदी है, पश्चिम बंगाल से गणेश दास जी है, नैनीचंद जी है, राकेश जी है, बसंती लाल जी है, और दिल्ली से धर्मवीर भैया जी है, उनके दो बच्चे हैं, और पंजाब से पुरुषोत्तम अंकल है, और सुनने वाले सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहती हूँ।
0: तो मोनिका जी
1: मैडम
0: सुनवा रहे
1: मैं
0: हैं।
1: एक मैसेज भी देना चाहती
0: हाँ
1: हूँ।
0: जरूर दीजिए, क्या संदेश देना
1: जी
0: चाहती हैं आप?
1: जी मैं सतीश भाई को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सतीश भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं
0: अच्छा, सतीश भाई
1: बहुत
0: इस वक्त
1: ज्ञान की
0: आपके
1: बातें
0: जो
1: करते हैं।
0: सतीश भाई हैं इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं।
1: जी मैडम
0: जी, और सुनकर आपको भी वापस थैंक यू बोल रहे होंगे। तो मोनिका जी सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत, फिल्म है अफसाना प्यार का।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: हेलो
0: जी, हमारी बात हो रही है संजना जी से।
1: जी। हाँ, मैं संजना बोल रही हूँ
0: जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं, हमारे श्रोताओं को भी बताइए।
1: जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और
0: जी
1: मेरा
0: जी
1: नाम संजना है
0: जी
1: जी।
0: और गाना बता दीजिए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मैं मासूम फिल्म की गाना सुनना चाहती हूँ, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान में।
0: जी, बहुत ही अच्छा गीत चुना है आपने। संजना जी, बताइए कुछ अपने बारे में, आप कब से दिल्ली में हैं?
1: जी, अभी मैं वैसे तो फोर्ट ब्लेयर की ही हूँ, लेकिन मेरी शादी यहाँ दिल्ली पे हुई है और मैं अभी यहाँ 15 साल हो गई है दिल्ली
0: अच्छा, दिल्ली शिफ्ट
1: में
0: होने
1: हूँ।
0: का अनुभव कैसा रहा आपका?
1: शुरू में तो थोड़ी सी घर की याद,
0: हेलो हेलो संजना जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो श्रोताओं, लगता है एक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। सुनवा रहे हैं संजना जी की पसंद पर फिल्म मासूम का ये गीत।

हेलो डियर फ्रेंड, हेलो हेलो डियर फ्रेंड, हेलो श्रोताएं, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: हेलो
0: जी, हमारी बात हो रही है निशिता जी से।
1: जी, थैंक
0: निशिता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: यू मैम। गाना
0: और आप बता दीजिए, सबसे पहले गाना बता दीजिए।
1: मेरा एजेंट विनोद सिंह का गाना राबता, अरिजीत
0: जी,
1: सिंह का गाना
0: अरिजीत
1: गाया
0: सिंह की
1: हुआ।
0: आवाज़ में है। और बताइए निशिता जी कुछ अपने बारे में।
1: मेरा नाम निशिता है और मैं शादीपुर से बोल रही हूँ और मैं एक बीएड करके जस्ट अभी आई हूँ भोपाल से। जी
0: अच्छा, आपने अपना बीएड भोपाल में कंप्लीट किया। तो निशिता
1: जी
0: जी, आप क्या इस कार्यक्रम से पहली बार जुड़ रही हैं? आप यहाँ से पहली बार कॉल आया है आपको?
1: मैम।
0: और बताइए, खाली समय में क्या करती हैं?
1: वैसे तो अभी खाली समय है नहीं, पढ़ाई चल रहा है,
0: इसके
1: सीटेट
0: बाद क्या
1: वगैरह
0: करने का
1: थी
0: सोचा
1: और
0: है आपने? अभी बीएड तो हो गया आपका, उसके बाद?
1: अभी ट्राई करूंगी कोर्स में पढ़ाने के लिए। जी
0: अच्छा, टीचिंग के प्रैक्टिस के लिए जाएंगी
1: जी
0: आप
1: जी जी
0: तो। और ये गाना आप किन के साथ सुनना चाहती हैं?
1: मेरी फ्रेंड्स है नेहा जो भोपाल में है, मेरी सिस्टर है निकिता जो गुजरात में है, और मेरी कजन है जो रंगत में रहते हैं, स्नेहा और शंपा।
0: तो कोई है जो दोस्त आपका श्री विजयपुरम में रहता है? आपके सारे दोस्त कजिन सब दूर दूर रहते हैं।
1: हाँ
0: आप जब यहाँ पे रहती है, बोर होती हैं, तो किन के साथ बाहर घूमने जाती हैं? यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है आपका?
1: हाँ बहुत कम ही दोस्त हैं, मम्मी
0: अच्छा, तो आप अपने
1: के साथ
0: वहाँ पे
1: जाती
0: जो
1: हूँ।
0: भोपाल में जो दोस्त हैं, वो सब, मैं उनको मिस करती हैं।
1: हाँ जरूर।
0: जी। तो निशिता जी, सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत, फिल्म है एजेंट विनोद।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: हेलो
0: जी, हमारी बात हो रही है बसंती जी से।
1: जी।
0: बसंती जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप?
1: मैं हेडो की रहने वाली हूँ।
0: हेडो की रहने
1: हाउस
0: वाली हैं।
1: वाइफ
0: और
1: हूँ।
0: गाना बता दीजिए सबसे पहले।
1: अपना पसंद का गाना सुना दीजिए।
0: आपने कहा अपना पसंद का कोई भी गाना, तो हम सुनवा रहे हैं आपको फना फिल्म का गीत, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। और कुछ अपने बारे में बताइए।
1: मैं फ्लैट में फिलहाल तो हाउस वाइफ
0: जी, इससे पहले क्या कहा आपने, हम सुन नहीं पाए
1: लैब
0: आपको।
1: टेक्नीशियन।
0: लैब टेक्नीशियन का, अच्छा पहले करती थी काम।
1: हाँ करती तो अभी 1 साल से ना बीमार हो गई ना, इसीलिए घर
0: ओहो, अभी आपकी तबीयत कैसी है?
1: ठीक है। अभी पहले से ठीक है जी,
0: तो दोबारा काम जाने का सोचा है आपने?
1: पूरा ठीक होगी उसके बाद ही, हस्बैंड को तो छोड़ दी।
0: हाँ, पूरी तरह से रेस्ट लीजिए, उसके बाद ही जाइए। जी, सब स्वस्थ रहेंगी तो आप आगे भी काम कर पाएंगी। तो बसंती जी, आप ये गीत किन के साथ सुनना चाहती हैं?
1: हस्बैंड है, बच्चे है।
0: जी, ठीक है, सुनवा रहे हैं आपको हमारी पसंद का ये गीत, फिल्म है फना से।
1: जी।

तो दोस्तों इसी के साथ हेलो डियर फ्रेंड में आज की हमारी मुलाकात यहीं समाप्त होती है। आज जिन श्रोताओं से फ़ोन पर बातचीत हुई उन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातें हुई बहुत अच्छा लगा। जिन दोस्तों के साथ आज बातें नहीं हो पाई उन्हें अगले दिन इसी कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। उम्मीद है श्रोताओं आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी दोस्त श्री विद्या को इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम। यूं ही गाते रहो।

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं श्री विद्या। दोस्तों, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि के बाद ही मिले। कभी कभी एक कप चाय, किसी अपने का फोन, पुरानी यादों की एक तस्वीर, रास्ते में किसी बच्चे की मासूम हंसी या फिर अपना पसंदीदा गीत सुन लेना भी दिल को खुश कर देता है। जिंदगी का हिसाब अगर हर पल की परेशानियों से लगाया जाए तो शायद खुशियां कम लगेंगी, लेकिन अगर छोटी छोटी अच्छी बात को गिनना शुरू कर दें तो पता चलेगा कि जिंदगी में मुस्कुराने की वजहें बहुत हैं। तो आज के सफर में हम बात करेंगे मुस्कुराहट की, हंसी की और उन छोटी छोटी खुशियों की जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। क्योंकि खुशी का सबसे सुंदर रूप यही है कि वो बांटने से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसी सोच के साथ कि अगर हमारी एक मुस्कान किसी और के चेहरे पर मुस्कान ले आए तो उससे खूबसूरत बात और क्या होगी।

क्या खूबसूरत संदेश है दोस्तों। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना, कभी किसी को सच्चे दिल से धन्यवाद कह देना, और कभी मुश्किल समय में बस उसके साथ खड़े रहने में भी बहुत बड़ी बात होती है। याद रखिए दोस्तों, हर दिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। और जब जिंदगी में कोई अपना हमारी मुस्कान की वजह बन जाए तो खुशियाँ और भी खास लगने लगती है।

लगता है। लेकिन एक बात और है, खुद को भी अपनी मुस्कुराहट की वजह बनने दीजिए। दूसरों से खुशियाँ मिले ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना ये कला हमें खुद सीखनी पड़ती है।

0: निन्यानवे 4.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। हमारी आज की इस दूसरी सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आइए श्रोताओं, सभा का शुभारंभ करते हैं निकोबारी कार्यक्रम से।
1: सिन्ला मेनी रॉक रहमांग इंगरे तका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्स रामांग एलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्य निकोबारी प्रोग्राम तहांग।
2: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: मिनका तलोन ही इंगिला हराब तरन ने महावत करेचोंग नलक एलहोय ने खुन पानाम ही। एमवी चौली बॉय चू मायबंदर तटिकलीपूर इप फिने ना अलांगो सेप्टेंबर चिंगेन इतसाट करनो तबह नलक न्य फिनिक्स पे चेट्टी ngachawan min iptinni alango chingen itasat karno te bhu narang tiklipur sik maya bandar anmin eltala karana jusri vijayapuram mv sentinel asun nge nenangchu lidil andaman ipurej इधवरकनो तबह नलग नहडवाव ngachawan ilaren ipurit इधवरकनो तातम नरा आंगलीडिल अनमान नजुश्री विजयपुरम एमिकालिखाट चुलीडिल अनमान तकानिकबार ipurit इदसटकनो तबह नलग नहडवाव ngachawan min ifinina alangochinge इदफेनकनो तलाहराब नरांकानिकबार सिकलीडिल अनमान अनमिन एल्तालेकरन नजुश्री विजयपुरम हेक अनमिन गमचोंग एम वी कालीखाट न जुलीडिल अंडमान तकानिकुबार इप्सिनात अलांगो जिंगेत इदसट कनो दबह नलग नहेडुवाव ngachawan min इभिनेवरे अलांगो जिंगेत इदफेन कनो तलाहराब नरांकानिकुबार सिक लिडिल अंडमान अनमिन एलताले करन जुश्री विजयपुरम नालंदा चुननकरित कैम्बल बे इभिनेवरे अलांगो जिंगेत इदमजोत्र कनो दबह नलग नहेडुवाव ngachawan min ipsinam alango jinget itahevra kanro tabuh narang kembal be siknan kur anmin eltala karana jusri vijayapuram anununne minka talonhi ingila harab
3: your islands your story our pride ngampanam hi tindiknen hi nanyahi he inahi hangitre ye tarok creators राल तारीख आकुंगे कुन पानम ही अंडमान निकोबार आइलैंड्स इप्ता आव इन द स्टोरी रे नवामे नवानाय हे इन रिक नरंगी कुन पानम ही तने तारो कर पानम नी अंदंगमो तकी तुरे तक ये हमक तरे एलक तनिंगम जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज मिने न्यंगी प्रोग्राम रमांग इंगम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तंगम प्रसार भारती इन रे ने नुन तह हमक न्यू वी इनुप कंटेन ये तसा मिने तने हिन रे तिन रे गेन ही आकुंगी कुन बनम रे मिने कल्चर तरोही तमिने टूरिस्ट प्लेस तमिने तरोल कांगेन ट्रेडिशन ही इन रे होल रे तप त चीत स्टोरी यिप आकुंगी कुन बनम तसा ही आई एनी कुबारी तयिप तहेंग इन रे नी मिन इन लाहन ये एवी वी अब तहिंग सेल द लो मिनट्स अ वीडियोस तवी नवीने ने स्टोरी नी कुन पानम ही ने नुन मिन तानिंग लेन अब तमी होय तंगम डिस्ट्रिक्ट लेवल तिंग लेन त तानी अनाय कन तरुपी इंगम स्टेट लेवल ने 2 लाख तानिंग लेन ngach ingam national levels menangana

Hello, dear friends. Welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. हर बार की तरह आज भी हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लाए हैं आपके लिए। आजकल तो डेटा साइंस के बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या है ये डेटा साइंस? व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस? आगे बढ़कर क्या होगा, उसे सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आइए जानते हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में आज के लम्हे प्रोग्राम में। डेटा साइंस एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा का अध्ययन, विश्लेषण और उसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके नए ज्ञान और अंतर्निहित संबंधों की पहचान की जाती है ये डेटा को संरचित और असंरचित रूप में उपयोग करके नई जानकारी और अद्यतित सूचनाओं का उपयोग करने की प्रक्रिया है। डेटा साइंस के माध्यम से आप बड़े डेटा सेट से नए निर्णय ले सकते हैं। मशीन लर्निंग के माध्यम से वैश्विक मानक एल्गोरिथम्स का निर्माण कर सकते हैं और दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा नीतियों को बना सकते हैं। डेटा साइंस का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि आजकल डेटा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद होता है। ये संगठनों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, उद्योग में नए संभावनाएं प्राप्त करता है, ग्राहकों के अनुभव को सुधारता है और सामाजिक मुद्दों के समाधान में सहायता प्रदान करता है। डेटा साइंस में करियर के अवसर भी बहुत बढ़ते हैं। ये एक रोचक क्षेत्र है जहाँ आप डेटा साइंस, डेटा प्लानिंग, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट और बड़े डेटा विश्लेषक जैसे पदों पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही डेटा साइंस का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में जैसे वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं। डेटा साइंस का अध्ययन करके आप डेटा के बड़े वाले बाजार में रुचिकर करियर बना सकते हैं और आपको अच्छी सैलरी और प्रोफेशनल विकास की संभावनाएं मिलेंगी। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। डेटा साइंस का महत्व विशेष रूप से बढ़ रहा है क्योंकि आजकल विभिन्न संगठन और उद्यम डेटा के माध्यम से और बेहतर निर्णय लेने के लिए डेटा साइंस का उपयोग कर रहे हैं। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग और सांख्यिकी के माध्यम से संगठित और असंगठित डेटा से नई जानकारी प्राप्त करके उद्योग, सरकार और सामाजिक माध्यम के लिए महत्वपूर्ण नई दिशाएं खोजने में मदद करती है। डेटा साइंस बड़ी मात्रा में डेटा का गहन अध्ययन है जिसमें कच्चे, संरचित और असंरचित डेटा से कुछ अर्थ निकालना शामिल है। बड़ी मात्रा में सार्थक डेटा निकालने के लिए डेटा की प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है और ये प्रोसेसिंग सांख्यिकीय तकनीकों और एल्गोरिथम, वैज्ञानिक तकनीकें, विभिन्न तकनीक आदि का उपयोग करके की जा सकती है। ये कच्चे डेटा से सार्थक डेटा निकालने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करता है। डेटा साइंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, रवि को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है लेकिन जब भी वो किताब खरीदना चाहता है तो वह हमेशा उलझन में रहता है कि उसे कौन सी किताब खरीदना चाहिए क्योंकि उसके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। यहाँ डेटा साइंस तकनीक उपयोगी होगी। जब वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खोलते हैं तो उसे अपने पिछले डेटा के आधार पर उत्पाद अनुशंसा मिलेंगे। जब वे उसमें से किसी एक को चुनते हैं तो उसे इस पुस्तक के साथ इस पुस्तकों को खरीदने की अनुशंसा भी मिलती है क्योंकि ये सेट सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। इसीलिए उत्पादों की सभी अनुशंसाओं और सामूहिक रूप से खरीदी गई पुस्तकों के सेट दिखाने

डेटा साइंस के उदाहरण में से एक है। डेटा साइंस का सबसे उपयोगी अनुप्रयोगी सर्च इंजन है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम इंटरनेट पर कुछ खोजना चाहते हैं तो हम ज़्यादातर सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, इसीलिए डेटा साइंस का उपयोग सर्च को तेज़ी से करने के लिए किया जाता है। डेटा साइंस का इस्तेमाल रियल टाइम में ट्रांसपोर्ट फील्ड जैसे ड्राइवरलेस कारों में भी किया जा सकता है। ड्राइवरलेस कारों की मदद से दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना आसान है। उदाहरण के लिए चालक रहित कारों में प्रशिक्षण डेटा को एल्गोरिथम में डाला जाता है और डेटा वैज्ञानिक तकनीक की मदद से डेटा का विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि हाईवे, संकीर्ण सड़कें आदि में गति सीमा क्या है और ड्राइविंग करते समय विभिन्न स्थितियों को कैसे संभालना है आदि। वित्तीय उद्योग में डेटा विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय उद्योगों में हमेशा फाइनेंस डीलिंग्स में हमेशा धोखाधड़ी और नुकसान के जोखिम का मुद्दा रहता है। इस प्रकार वित्तीय उद्योगों को कंपनी के लिए रणनीति निर्णय लेने के लिए नुकसान के जोखिम विश्लेषण को स्वचालित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा वित्तीय उद्योग भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा विज्ञान विश्लेषक उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये कंपनियों को ग्राहक के जीवन काल मूल्य और उनके शेयर बाजार की चाल का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए स्टॉक मार्केट में डेटा साइंस मुख्य भाग है। स्टॉक मार्केट में डेटा साइंस का उपयोग पिछले डेटा के साथ पिछले व्यवहार की जांच करने के लिए किया जाता है और उनका लक्ष्य भविष्य के परिणाम की जांच करता है। हर उद्योग डेटा की शक्ति का उपयोग करके नई ऊंचाइयों को छू रहा है, अपने कौशल को निखार और 12वीं सदी के सबसे हॉट ट्रेंड का हिस्सा बने। तो दोस्तों, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla spice.lamhe.vanilla। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से थोड़ी देर में यानी 6:45 पर सुनेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे का समय रहेगा तमिल कार्यक्रम का, जिसके तहत आप सुनेंगे पोषण सप्ताह के दूसरे दिन पर और विश्व नारियल दिवस पर चर्चाओं के अलावा बच्चों के लिए कार्यक्रम सिरोवर पूंगा। बंगला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर होगी पोषण सप्ताह के अलावा विश्व नारियल दिवस पर चर्चाएं और डॉक्टर सुप्रिया आरंगी के साथ साक्षात्कार। विषय होगा आई डोनेशन फोर्टनाइट। संध्या 6 बजे कृषि

जगत कार्यक्रम में सही पोषण सही देश रोशन विषय पर श्रीमती शीबा जॉन से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। कुछ दर्द भरे फिल्मी नगमे सुनिएगा। 6:30 पर कार्यक्रम होगा दर्द भरे नगमे। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया, इस कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। चित्रपट संगीत रात्रि 8:00 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरवगान तथा रात्रि 10:00 होगा कार्यक्रम सरगम। जबकि इसी समय यानी रात्रि 10:00 आप सुनेंगे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और अब एक नज़र डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 5:25 पर हमारी पहली सभा की शुरुआत होगी। 5:30 पर अनमोल विचार के बाद होगा प्रभाती वंदना कार्यक्रम। 5:55 पर एग्री टिप्स में जानकारी का विषय रहेगा अंडे के छिलके से बनाए खाद। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे 6:10 पर। सपना शीर्षक पर केंद्रित होगा कल का हमारा इंद्रधनुष कार्यक्रम, जिसका आप आनंद ले पाएंगे 6:15 पर। 6:30 पर रामचरित मानस गान और 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वतन के गीत। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण सुनिएगा 6:50 पर। 7:15 पर होगा देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर हम प्रसारित करेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम 7:30 पर, जिसमें सुना जा सकता है पर्यावरण के तहत श्रीमती सफीना की वार्ता पर्यावरण चेतना आज की जरूरत। 8:30 पर सुगम संगीत के तहत सुनिएगा ए हरिहरन रेणु और विजय सिंह को। तराने सुहाने कार्यक्रम का समय रहेगा 9:00। शास्त्रीय संगीत में 9:30 पर आप सुनेंगे यू श्रीनिवास का मेंडोलिन वादन। SMS माई चॉइस कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनवाई जाएगी दिन के 11:00। 11:30 पर होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। दोपहर 12:00 का समय रहेगा तेलुगु कार्यक्रम का। मलयालम कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे 12:30 पर, जिसके तहत आप सुन पाएंगे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर चर्चा और गीत। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे वत्सला मेहरा और अनुराधा पौडवाल। और दोपहर 1:30 पर आप सुन पाएंगे व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी, जिसमें पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी प्राइमरी चैनल पर 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें होंगे सूचनाओं के अलावा मुस गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कुछ पुराने गीत। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, 4:40 पर कार्यक्रम विवरण और 4:45 पर होगा कार्यक्रम बाहरों की शाम। तमिल में शाम 5:00 होगा कार्यक्रम वेलनुलगम। बंगला में 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिरंतोनी। किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा 6:00, जिसमें आप सुनेंगे बिमलीटान की महिला श्रीमती कमला से की गई बातचीत, पशुओं का सही आहार और सही पोषण। 6:30 पर सुनेगा श्री हमीदुल्ला का लिखा नाटक अपना अपना दर्द। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन सकते हैं 7:15 पर। 7:30 पर हम प्रसारित करेंगे युवाणी कार्यक्रम के तहत पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार। रात्रि 8:00 चित्रपट संगीत, 8:30 पर होगा रोजगार समाचार और गौरवगान। इन कार्यक्रमों के अलावा आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर कार्यक्रम इनसाइट्स और रात्रि 10:00 क्षेत्रीय लोक एवं

उद्गम संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है। समय शाम के 4:45। सुनते हैं बहारों की शाम। कार्यक्रम का ये पहला गीत लगान फिल्म से। गायक कलाकार हैं आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और साथी।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: बहारों की शाम कार्यक्रम का अगला गीत गैंगस्टर फिल्म से सुना रहे हैं।

0: केके के गाए फिल्म गैंगस्टर के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है, शाम के 5 बजे हैं, सुनते हैं तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழ் அமுதம் வணக்கம் நேர்களே.

ये था हमारा बंगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं, सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

छोड़कर आराम जो खेतों में पसीना बहाता है, सचमुच वही इस देश का भाग्य जगाता है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम कृषि जगत में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रागिनी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत एक अनमोल विचार से किया जाता है और अनमोल विचार है, मेहनत का सिक्का जब उछलता है तो आसमान भी रास्ता बदल देता है। परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, आपका हौसला हमेशा आपकी किस्मत से बड़ा होना चाहिए। जी हाँ किसान।

0: साथियों, जब हम लगातार सही दिशा में प्रयास करते हैं तो भाग्य को भी आपका साथ देना पड़ता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। द्वीपों के लिए अरबी की उपयुक्त किस्में कौन सी है? किसान साथियों, इस प्रश्न को फिर एक बार दोहराते हैं। द्वीपों के लिए अरबी की उपयुक्त किस्में कौन सी है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए और हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहिए। इस प्रश्न का उत्तर हम कार्यक्रम के अंत से पहले जरूर बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान साथियों, आज 2 सितंबर है और आज ही के दिन हर साल विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। नारियल को हमारे स्वास्थ्य, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इसी वजह से यह दिन विशेष सम्मान देने के लिए समर्पित है। इनका मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती और इसके औषधीय व आर्थिक महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नारियल उत्पादन से जुड़े किसानों को नई तकनीकों और बेहतर पैदावार के तरीकों के बारे में शिक्षित करना है। कई विकासशील देशों में नारियल उद्योग रोजगार का एक बड़ा जरिया है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो पहली बार विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर 2009 को मनाया गया था। किसान भाइयों, भारतीय संस्कृति में नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष यानी सभी इच्छाएं पूरी करने वाला पेड़ कहा जाता है, क्योंकि इसका हर हिस्सा उपयोगी होता है। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है। इसके अलावा नारियल का तेल, दूध और मलाई सेहत के लिए वरदान माने जाते हैं। इसके रेशों से रस्सियां, चटाइयां और ब्रश बनाए जाते हैं तथा इसके कड़े छिलके से बर्तन और सजावटी सामान तैयार होता है। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश मुख्य उत्पादक राज्य है। इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। भारत में इसके विकास के लिए नारियल विकास बोर्ड काम करता है, जो किसानों को नई तकनीकों और सब्सिडी की जानकारी देता है। नारियल पानी में पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को तुरंत रिहाइड्रेट करते हैं। नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है, यह त्वचा और बालों के लिए प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का काम करता है। साथियों, अगर संक्षेप में कहें तो विश्व नारियल दिवस केवल एक फल का उत्सव नहीं है, बल्कि यह उस कल्प वृक्ष के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, जो सदियों से मानव सभ्यता को भोजन, स्वास्थ्य और आजीविका दे रहा है। आज के समय में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और खाद्य संकट से जूझ रही है, तब नारियल जैसे टिकाऊ और बहुउपयोगी पेड़ का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम नारियल किसानों का समर्थन करें, इसके औषधीय गुणों को अपनी जीवन शैली में अपनाएं और इस बहुमूल्य प्राकृतिक उपहार के संरक्षण का संकल्प लें। साथियों, अभी आप सुन रहे थे विश्व नारियल दिवस के संदर्भ में कुछ बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण बातें। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया यह वार्षिक पोषण कार्यक्रम है। साथियों, इसका मकसद है लोगों को संतुलित और पौष्टिक भोजन के बारे में जागरूक करना। हमारे देश में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों में देखने को मिलता है। पोषण शिक्षा के द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1982 में केंद्रीय सरकार द्वारा पहली बार इस अभियान की शुरुआत की गई। शरीर यदि स्वस्थ है तो

0: हर काम आराम से किया जा सकता है। साथियों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हर माँ और बच्चे तक सही खाने की जानकारी पहुँचाना, कुपोषण, खून की कमी और मोटापा कम करना, अपने खेत के देसी खाने, मोटा अनाज, सहजन, हरी सब्जी को वापस लाना। पोषण का मतलब महंगा खाना नहीं है, पोषण का मतलब है अपने खेत का उगाया हुआ, साफ सुथरा और समय पर खाया हुआ खाना। साथियों, शरीर यदि स्वस्थ है तो हर काम आराम से किया जा सकता है। पोषण सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है, जिसका विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और अंततः राष्ट्रीय विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। जब हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। आशा है कि आप इन बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। इसलिए यह कहना उचित ही होगा कि सही खाओ, बेहतर जीवन जियो। तो किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तहत सेहत और सही खान पान से जुड़ी कुछ खास और जरूरी बातें।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: चलिए, सेहत के इस जरूरी बात के बाद अब रुख करते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ। आइए सुनते हैं आधुनिक कृषि में यंत्रीकरण की भूमिका पर एक चर्चा। साथियों, पहले कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान, लेकिन आज खेती अब सिर्फ बैल और हल तक सीमित नहीं रही। जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन घट रही है और मजदूर मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आधुनिक कृषि में मशीनों का प्रयोग यानी यंत्रीकरण वरदान बनकर आया है। किसान भाइयों, क्या है ये यंत्रीकरण? खेती के हर काम, जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, मढ़ाई और भंडारण में आधुनिक मशीनों और उपकरणों का उपयोग ही यंत्रीकरण कहलाता है। जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, ड्रिप सिस्टम, ड्रोन, सीड ड्रिल आदि। आधुनिक कृषि में यंत्रीकरण की भूमिका। पहला है समय और श्रम की बचत। जो काम 10 मजदूर 5 दिन में करते थे, वही काम ट्रैक्टर और हार्वेस्टर से 2 या 3 घंटे में हो जाता है। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। मशीनों से गहरी जुताई, एक समान बुआई और समय पर कटाई होती है, जिससे प्रति हेक्टर पैदावार 20-30% तक बढ़ जाती है। तीसरा है लागत में कमी। लंबे समय में मजदूरी की लागत बहुत कम हो जाती है। एक बार मशीन खरीदने पर कई सालों तक लाभ मिलता है। चौथा है कम जमीन में ज्यादा काम। छोटे किसान भी अब पावर टिलर, मिनी ट्रैक्टर जैसे छोटे यंत्रों से कम जमीन में भी अच्छी खेती

0: कर सकते हैं। पांचवा है आधुनिक तकनीक का जुड़ाव। साथियों, आज तो खेती में ड्रोन जैसे दवा का छिड़काव, जीपीएस से ट्रैक्टर चलाना और सोलर पंप से सिंचाई जैसी तकनीकें आ गई है। और छठा है किसानों की आय में वृद्धि। समय पर कटाई और अच्छी गुणवत्ता के कारण किसान को मंडी में अच्छा दाम मिलता है और उसकी आय दोगुनी करने में मदद मिलती है। सरकार इस दिशा में कई योजनाएं चला रही है, जैसे सब्सिडी पर मशीन देना, कस्टम हायरिंग सेंटर, किसान क्रेडिट कार्ड आदि। किसान भाइयों, यंत्रीकरण आधुनिक कृषि की रीढ़ है। अगर मशीन का उपयोग समझदारी से हो, सहकारी समितियों के द्वारा और सरकार की मदद से किया जाए तो यह न केवल उत्पादन बढ़ाएगा बल्कि भारत को कृषि प्रधान से कृषि तकनीक प्रधान देश भी बनाएगा। इसलिए साथियों, यह कहना उचित ही होगा कि यंत्र है तो कृषि है और कृषि है तो देश है। साथियों, अभी आप आधुनिक कृषि में यंत्रीकरण की भूमिका पर चर्चा सुन रहे थे।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं श्रीमती शीबा जॉन से की गई खास बातचीत, जो हमें बताएंगी कि कैसे सही पोषण से देश रोशन होगा।
2: साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष भारतवर्ष में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। इसी के तहत आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती शीबा जॉन जी को, जो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिरकाटांग की कार्यकर्ता है। शीबा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी नमस्कार।
2: शीबा जी, जैसा कि आप जानती हैं कि आज हमारी बातचीत का विषय है सही पोषण देश रोशन, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पोषण और स्वास्थ्य को किस तरह से देखती हैं?
3: जी, अगर हमारा भोजन सही होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो यानी कि हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए।
2: बिल्कुल, पौष्टिक आहार से आपका मतलब है संतुलित भोजन।
3: जी,
2: भोजन का संतुलित होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें सभी आवश्यक प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में उपस्थित हों, तभी हमारा भोजन जो है वो संतुलित कहलाता है। लेकिन ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको परिपूर्ण करना हर व्यक्ति के बस में शायद आज भी नहीं है। हमारा मानना यही होता है कि हम भर पेट भोजन कर लें, ऐसा भोजन करें जिससे हमारा पेट भर जाए, और वही हमारे लिए एक कंप्लीट डाइट होता है। तो क्या ये सही है?
3: बिल्कुल नहीं मैम, क्योंकि हमारा भोजन जो है बैलेंस होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि उसमें हर तरह का प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आयरन सब बैलेंस होना चाहिए। अगर हम पेट भर के खाएंगे तो उसमें हो सकता है कि सारे विटामिन मिनरल्स हमें ना मिले, तो इसलिए हमें वो देखकर खाना चाहिए कि किस चीज से प्रोटीन मिलेगा और अच्छा फैट्स मिलेगा।
2: बिल्कुल।
3: और आयरन रिच फूड, जैसे कि एनीमिया ना हो और हम बीमार ना पड़े, इसके लिए हमें जो है हेल्दी फूड खाना चाहिए।
2: कुछ शाकाहारी में आप बताइए कि जो लोग शाकाहारी लोग हैं, ये एक समाज की भ्रांतियां हैं कि जो शाकाहार का सेवन करते हैं उन्हें ज्यादा भोजन खाने की जरूरत पड़ती है बजाय कि मांसाहारी लोगों के। कहते हैं ना कि नॉन वेज डाइट जो है उसमें ज्यादा ताकत है, तो ये कहना क्या सही है?
3: नहीं मैम, ऐसा नहीं है। जो शाकाहारी है उनको जो है प्रोटीन्स वगैरह ज्यादा लेना, क्योंकि मीट्स वगैरह में प्रोटीन, आयरन ये सब रहता है, तो शाकाहारी भी जो है हरी लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और सोया बीन वगैरह जो प्रोटीन है, मिल्क है, प्रोटीन बीन्स, जैगरी,

0: ये वगैरह ले सकते हैं
1: ये उसके सब्स्टिट्यूट जो
0: सब्स्टिट्यूट
1: हैं
0: है।
1: प्रोटीन के, तो वो लेंगे तो बराबर हो जाता है। अभी यहाँ एक चीज और देखने में आती है कि आप जैसे बता रही हैं कि आपका जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर से जो सेंटर है, यहाँ पर तो सभी तरह के लोग आते होंगे,
0: जी
1: ठीक है ना? तो आपने अभी तक क्या देखा है कि जो ये डेफिशिएंसीज हैं, ये किन में ज्यादा पाई गई हैं? बच्चों में ज्यादा हैं या फिर महिलाओं में हैं? तो किन में जो फूड डेफिशिएंसीज हैं, ये किस एज ग्रुप में ज्यादा पाई गई हैं?
0: ज्यादातर एडोल्सेंस बच्चों में हमने देखा है मैम, क्योंकि
1: जी
0: उनका जो खान पान है वो सही नहीं है। उनको ब्रेकफास्ट उनको स्किप कर दिया जाता है या फिर लंच सही से नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से ज्यादातर एडोल्सेंस में हम देखते हैं कि उनको डाइट लेके उनका जो ग्रोथ है वो भी कम है, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं इस वजह से।
1: उनमें प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपका जो सेंटर है वो क्या काम कर रहे हैं? आप लोग किस तरह से इस बात का पता लगाते हो, और जब पता चल जाता है कि क्या कुछ डेफिशिएंसीज हैं, तो मतलब आप किस तरह से उनको पोषक के एक सही पैमाने पर लेकर आते हो?
0: जी उसके लिए हमारे स्कूल्स में मिड डे मील का अरेंजमेंट है,
1: जी
0: तो हम स्कूल में जाते हैं, देखते हैं कि बच्चे मिड डे मील ले रहे हैं या नहीं। जो
1: जी
0: बच्चे अगर घर से नहीं खा रहे हैं तो मिड डे मील में उनको सही से जो भी कैल्शियम प्रोटीन आयरन है वो सब मिल रहा है कि नहीं, हम फॉलो अप करते हैं मैम, और उनका हेल्थ चेकअप करते हैं, उनका एनीमिया टेस्ट करते हैं जिससे पता, और उनका हाइट वेट लेते हैं, उससे हमको उनका ग्रोथ चार्ट पता चलता है, BMI कितना है, कम है या ज्यादा है, इससे हम उनको जो है एडवाइस देते हैं कि क्या लेना है आपको, कैसे लेना है।
1: जैसा कि आपने बताया कि आपके सेंटर में बच्चों से लेके बड़ों तक का सभी के पोषण से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आती हैं, तो शिबा जी हम अब ये जानना चाहेंगे कि जब हमने बच्चों की बात की, सबसे पहले जो पोषण है वो मतलब छोटी उम्र से ही पोषण की जो आवश्यकताएं हैं वो अगर पूरी तरह से हम फुलफिल करते रहें, तो हमें लगता है कि बड़े होने तक जो है वो जो डेफिशिएंसीज हैं, अगर वो होती भी हैं तो उनका लेवल थोड़ा कम होता है ना? तो
0: जी
1: इसलिए बच्चों से ही हम लोग कंट्रोल जो है इसको किया जा सकता है। आपने बताया कि बच्चे जो हैं वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, और जो भी कुछ खाते हैं वो जो होता है वो पौष्टिक नहीं होता है, वो बैलेंस डाइट नहीं होती है, और वो अपना पेट और स्वाद, क्योंकि स्वाद और स्वास्थ्य जो है ये दोनों ही चीजें आज मेल नहीं खा रही हैं। जिन चीजों में टेस्ट होता है लेकिन वो पौष्टिक नहीं होती हैं,
0: जी
1: तो इस बारे में आपकी क्या राय है?
0: जी अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो हम माओं को सलाह देते हैं कि उनका आहार में क्या क्या होना चाहिए।
1: जी
0: जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको दूध, अंडे, और आंगनवाड़ी में है तो उनको वहां पे भी पल्सेस वगैरह दिया जाता है, सीरियल्स दिया
1: प्रोटीन
0: जाता है,
1: से जो भरपूर
0: प्रोटीन,
1: है। हाँ
0: जी
1: जी
0: तो प्रोटीन वहां पे भी मिल जाता है उनको। और उसके बाद उनका क्वांटिटी कैसे बढ़ाना है दिन पे दिन वो भी बताते हैं। और जैसे बच्चों का है तो हम बच्चों का हेल्थ चेकअप करके उनको बताते हैं कि उनको क्या बढ़ाना है।
1: जी
0: जैसे कोई बच्चों का वजन कम है तो हम उनको उनके हिसाब से बताते हैं कि उनका वजन बढ़ाना है, उनका डाइट पूछते हैं, वो डाइट एडवाइस करते हैं। और जो बच्चे एनीमिक है उनको आयरन रिच फूड के बारे में बताते हैं, और विटामिन सी से जुड़े फूड भी लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा होता है।
1: शिबा जी, हमने जैसे कि जिक्र किया कि छोटी उम्र से ही डेफिशिएंसीज जो हैं ये शुरू हो जाती हैं, और इनको उसी उम्र में जो है वो रोकना जरूरी होता है। तो हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि बच्चे खाते तो सब कुछ हैं, लेकिन जितना भी वो खाते हैं वो सारा ही न्यूट्रिशियस नहीं होता है, स्वाद में भरपूर होता है लेकिन सेहतमंद नहीं होता है। ऐसे में आपकी संस्था के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि बच्चों के फूड को कुछ अट्रैक्टिव बनाया जाए, जिसको कि देख के बच्चे अपने आप उसे खुद से मांगे, बजाय कि जंक फूड की तरफ जाने कि वो उस भोजन को खाएं? ऐसे कोई कदम आपके विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं?
0: जी मैम, तिरंगा भोजन के बारे में बताते हैं। वो ऐसा भोजन है जिसमें तीन रंग होते हैं,
1: अच्छा
0: तीन रंगों से बना एक फूड है।
1: हाँ
0: हाँ, उसमें हरा रंग होता है, सफेद रंग होता है, और केसरिया यानी कि लाल रंग।
1: हाँ
0: तो ये भोजन जो है अलग अलग पोषक तत्वों के साथ शामिल है, तो उसमें देखने में भी अच्छा है और बच्चे के सेहत के लिए भी अच्छा है।
1: क्या होता है उसमें, हरे रंग में आप लोग क्या डालते हैं?
0: ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है,
1: अच्छा
0: और फ्रूट्स में भी हरा रंग है।
1: जी, और केसरिया में?
0: केसरिया में हो गया हमारा पपाया,
1: जी
0: पम्पकिन, टमाटर,
1: गाजर
0: जी
1: है, जो भी
0: गाजर,
1: लाल रंग के फ्रूट्स हैं, और व्हाइट में जो है सफेद रंग में, सफेद रंग से रिलेटेड
0: राइस
1: फूड
0: है, मिल्क
1: आइटम्स जो
0: है,
1: हैं
0: जी
1: वो हैं, तो इनको किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं, क्या बनाते हैं इन चीजों से?
0: उनसे अलग अलग तरह के पौष्टिक आहार बनाते हैं, जैसे खिचड़ी हो गया,
1: अच्छा
0: फिर हलवा हो गया, दलिया जैसे बनाते हैं। जैसे मैम ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उसको
1: हाँ
0: हम लोग जैसे सलाद वगैरह बना देते हैं या सैंडविच बना देते हैं
1: डिजाइनर वे में।
0: डिजाइनर वे में, और
1: हाँ
0: फ्रूट्स को हम लोग ऐसे अलग अलग शेप में बनाते हैं कि बच्चों को लगे कि अट्रैक्टिव हो, तो वो तुरंत आके अपने
1: खेलते
0: से
1: खेलते खा लेते
0: खेलते
1: होंगे।
0: खेलते खा लेते हैं। कलरफुल होता है तो भी बच्चों का ध्यान वैसे जाता है।

0: है, तो हम वैसे भी उनको कुछ कुछ बना के दे सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो अगर बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो यही बच्चे जो हैं कल देश संभालेंगे, है
0: जी
1: ना। इसके बाद हम बात करते हैं अब गर्भवती महिलाओं की। महिलाओं में भी फूड डिफिशियंसीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो इसके बारे में आप बताइए कि आप लोग किस तरह से पहचानते हैं और उनका क्या निदान है।
0: जी गर्भवती महिलाओं को हम शुरू से ही देखते हैं। जब वो क्लिनिक पे आते हैं तो हम उनका वजन देखते हैं, हाइट देखते
1: जी
0: हैं, ब्लड कितना है बॉडी में वो देखते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि उनका डाइट कैसे होना है, जैसे कि

0: ही देखते हैं। जब वो क्लिनिक पे आते हैं तो हम उनका वजन देखते हैं, हाइट देखते
1: जी
0: हैं, ब्लड कितना है बॉडी में वो देखते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि उनका डाइट कैसे होना है, जैसे कि रोज सब्जी लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है, जैगरी लेना है और पल्सेस वगैरह लेना है,
1: जी
0: मिलेट्स है तो मिलेट्स लेना है, अंडे, दूध, ये सब का एडवाइस करते हैं और ज्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं और समय पर उनको चेकअप के लिए भी बुलाते हैं ताकि हम उनका ग्रोथ देख सकें।
1: और अगर ऐसा होने पर भी कहीं किसी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन लेवल कम जा रहा है, पोषण की उनमें कमी लगातार बनी हुई है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं?
0: हाँ, ऐसे में हम उनको सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे आयरन की गोली देते हैं, कैल्शियम की गोली देते हैं और उससे भी अगर नहीं होता तो हम डॉक्टर के पास भेजते हैं।
1: जी, जैसा कि हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: जी, इस सप्ताह के दौरान हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर किसी को फायदा हो, यानी
1: जी
0: कि हम हर जगह पर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह रखेंगे
1: जी
0: जिसे हम उनको बताएंगे उस प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि बच्चों के लिए, मदर्स के लिए, सबके लिए
1: जी
0: कैसे हम पौष्टिक आहार लें। पोषण अभियान के तहत हम सभी को ऊपर ये संदेश देना चाहते हैं कि सही पोषण होगा तो हेल्दी मदर, हेल्दी चिल्ड्रन एंड हेल्दी एडल्ट बनते हैं, तो इसी से जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और देश का ओवरऑल डेवलपमेंट भी इसी से होता है।
1: बिल्कुल
0: और पोषण के साथ साथ मैं और एक बात कहना चाहूंगी कि हाथ धोने और पोषण, इससे बहुत कनेक्शन है कि बोलने से हाथ अगर हम साफ रखेंगे तो इससे इन्फेक्शन और डायरिया से बचाव मिलता है और इससे बॉडी क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प होता है। हर घर में बैलेंस डाइट लें, सीजनल फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, पल्सेस, सीरियल्स, मिलेट्स, मिल्क, एग जैसे फूड को जो है शामिल करें और जंक फूड को कम करें और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, सेफ ड्रिंकिंग
1: बिल्कुल,
0: वाटर लें और हाइजीन मेंटेन करें।
1: और इसकी शुरुआत जो है अपने घर परिवार से की जाए। अगर आपका परिवार पूरी तरह से संतुलित आहार लेता है और उनके अंदर पौष्टिकता जो है वो भरपूर हो जाती है, तो ऐसे लोग बीमार कम पड़ेंगे। एक स्वस्थ परिवार एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा, और इसी तरह से स्वस्थ समाज से स्वस्थ देश की कल्पना की जा सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बताई हुई बातें जो है वो लोग सुनेंगे और वो अपने भोजन को पौष्टिक बनाने के लिए, संतुलित बनाने के लिए प्रयास करेंगे। भोजन सिर्फ आपके पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी शरीर की वृद्धि, विकास और रोगों से लड़ने के लिए ताकत देता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की इस महत्ता को आपको ध्यान में रखना है और अपने भोजन में वो तमाम प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स को शामिल करना है जो कि आपके लिए आवश्यक है।
0: बिल्कुल मैम, और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जंक फूड से जो है हमारे
1: दूरी
0: से,
1: बना के
0: जी
1: रखें।
0: हाँ, क्योंकि जंक फूड में ज्यादातर कैलोरीज, शुगर, सॉल्ट और अनहेल्दी फैट होते हैं,
1: जी
0: तो इससे जो है ओबेसिटी, डायबिटिक और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ता है।
1: बिल्कुल, जंक फूड को अपने भोजन से बिल्कुल बाहर निकाल दें और हरी साग सब्जियां, फल फ्रूट और प्रचुर मात्रा में पानी अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि सही पोषण आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को और आपके देश को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जो है वो दे सकता है। शीबा जॉन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
2: साथियों, सही पोषण देश रोशन के संदर्भ में श्रीमती शीबा जॉन से की गई ये बातचीत सुन रहे थे। तो किसान साथियों, सेहत की जरूरी बातें तो हो गई।
3: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो रील

0: डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: चलिए अब मन को थोड़ा बहलाया जाए, खेतों की ठंडी हवा के बीच क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुना जाए। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

साथियों, गीत तो आपने सुन लिया। आशा करते हैं कि खेतों की ठंडी हवा और इस सुरीले गाने ने आपकी थकान मिटा दी होगी। किसान साथियों, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे प्रश्न पूछा था कि द्वीपों के लिए अरबी की उपयुक्त किस्में कौन सी है, और इस प्रश्न का सही जवाब है, द्वीपों के लिए अरबी की उपयुक्त किस्में हैं श्री रश्मि, श्री किरण, श्री पल्लवी। इनके अलावा स्थानीय किस्मों का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथियों, उम्मीद है इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप सभी भाइयों को इस सवाल का सही और सटीक उत्तर पता चल गया होगा। तो किसान भाइयों, बातों और जानकारियों का यह सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अब अपनी इस दोस्त रागिनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। आप पेश कर रहे हैं कार्यक्रम दर्द भरे नगमे। श्रोताओं कहते हैं कि संगीत वो जुबान है जो उन एहसासों को भी आवाज़ दे देती है जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते। कुछ गीत खुशी के होते हैं तो कुछ गीत उम्मीद जगाने के, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल की अनकही बात कह दी हो। आज का सफ़र उन्हीं गीतों के नाम, जिनमें मोहब्बत भी है, इंतज़ार भी, यादें भी हैं और जुदाई का दर्द भी। तो चलिए शुरू करते हैं दर्द भरे नगमों का ये खूबसूरत सफ़र, और इस सफ़र में मैं हूँ आपकी अपनी प्रस्तोता फ़ातिमा।

कुछ रिश्ते हमारे साथ नहीं होते, लेकिन हमारी यादों में हमेशा रहते हैं। वक्त गुजर जाता है, लोग दूर चले जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक चेहरा वैसा ही रहता है। शायद इसीलिए कुछ गीत सुनते ही हमें लगता है कि ये तो मेरी कहानी है। दर्द हमेशा आंसू के रूप में नहीं आता, कभी ये खामोशी बन जाता है तो कभी अकेलेपन में बदल जाता है। किसी ने खूब कहा है, दर्द वही समझ सकता है जिसने मुस्कुराकर अपने आंसू छुपाए हों, और शायद यही वजह है कि दर्द भरे नगमे हमें इतने करीब लगते हैं।

जिंदगी भी कितनी अजीब है ना श्रोताओं। कुछ लोग सफ़र में मिल जाते हैं, उनमें से कुछ दो कदम साथ चलते भी हैं और फिर रास्ते अलग हो जाते हैं और हम उन्हें रोक नहीं पाते, बस उनकी यादों को अपने साथ लिए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना भुलाना चाहो वो उतना ही ज़्यादा याद आती है।

0: कार्यक्रम में अब हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

ब्रेक के बाद एक बार फिर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम पर कार्यक्रम दर्द भरे नगमे। दर्द दर्द का अगला पड़ाव होता है तन्हाई, और तन्हाई सिर्फ अकेले रहने का नाम नहीं है। कभी कभी हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी दिल किसी एक खास को तलाशता है। एक आवाज़, एक चेहरा, एक अपना सा कोई, और जब वो हमें नहीं मिलता तो भीड़ में भी हम अपने आप को तन्हा पाते हैं। शायद इसी एहसास को आवाज़ देता है हमारा अगला नगमा।

मोहब्बत में सबसे खूबसूरत एहसास शायद साथ होने को कहते हैं, और सबसे मुश्किल एहसास होता है किसी अपने का दूर हो जाना। लेकिन जुदाई हमेशा रिश्ते का अंत नहीं होता। कभी कभी ये दूरी हमें ये एहसास कराती है कि कोई हमारे लिए कितना खास था। और इसी एहसास के साथ चलिए सुनते हैं अगला गीत।

दिल टूटने का दर्द कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस बहुत होता है। इस टूटन के ज़रिए हमें कुछ लोग प्यार करना सिखा जाते हैं, कुछ इंतज़ार करना, तो कुछ लोग हमें खुद से यानी अपने आप से मोहब्बत करना सिखा कर चले जाते हैं। इसीलिए बिछड़ना केवल दर्द नहीं बल्कि सबक भी होता है कि जिसे जाना था वो चला गया, लेकिन ज़िंदगी किसी के आने से शुरू और किसी के जाने पे ख़त्म नहीं होती। लेकिन इस खम्बख्त दिल के हाथों मजबूर हम ढूंढते रहते हैं वही सुकून, वही अपनापन और वही पुराने दिन। कभी कभी तो दिल यह भी चाहने लगता है कि वापस लौट जाएं उस दौर में जहां खुशियां छोटी छोटी सी थी लेकिन सच्ची थी। तो श्रोताओं, दर्द, यादों, मोहब्बत और तन्हाई से भरा हमारा ये सफर अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है और हम आपसे इजाजत चाहते हैं।

मेरी पीक 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के ठीक 7 बजे हैं।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य

देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। चीनी की जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, व्यापारियों की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की गई। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की पहल से धान की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर, छोलदारी में 40 से अधिक किसानों ने फील्ड डे कार्यक्रम में लिया भाग। और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दक्षिण अंडमान पुलिस ने युवाओं के लिए खेल और जागरूकता गतिविधियां आयोजित कीं।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। यह शिखर सम्मेलन केंद्र और राज्यों को

एक मंच पर लाकर जल क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार करने पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर चर्चा की जा रही है। इनमें जल अवसंरचना परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन, जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन, पेयजल प्रणालियों के जल स्रोतों की स्थिरता और जल जीवन मिशन 2.0 शामिल है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केंद्र और राज्यों के बीच साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। यह व्यवस्था इस महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। सरकार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य चीनी की जमाखोरी पर रोक लगाना, बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी एक समय में 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकेगा। साथ ही खरीदी गई चीनी को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक भंडारित नहीं किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और अनावश्यक रूप से सोना खरीदने से बचने की अपील की है। उन्होंने विदेशों में छुट्टियां मनाने और शादी ब्याह करने से भी बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति को और मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने देश की 7.8% आर्थिक विकास दर हासिल करने पर लोगों को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं, युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के बावजूद भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने युवाओं की मेहनत और देश की प्रगति में उनके योगदान की सराहना की। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में कल राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए परिचयात्मक सह नामांकन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम व्याख्यान दीर्घा में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य छात्रों को एनएसएस के उद्देश्यों, मूल्यों, गतिविधियों और जिम्मेदारियों से परिचित कराना था। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. पर्ल देवदास ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने सामुदायिक सहभागिता के महत्व और छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी तथा सेवा भावना विकसित करने में एनएसएस की भूमिका पर प्रकाश डाला। एनएसएस समन्वयक निधि शेखावत ने कार्यक्रम अधिकारियों और स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने छात्रों को एनएसएस की योजनाओं और वार्षिक गतिविधि कैलेंडर की जानकारी दी। कार्यक्रम का समन्वय एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी नितिन कुमार सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में प्रथम वर्ष के छात्रों ने भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, किसानों के लिए फील्ड डे कार्यक्रम और नशा मुक्त भारत अभियान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम और दक्षिण अंडमान के कृषि विभाग के सहयोग से आज छोलदारी स्थित ब्लूम्सडेल रिसर्च फॉर्म में फील्ड डे कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय था अधिक उपज देने वाली धान की किस्मों के प्रदर्शन के माध्यम से धान की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि। कार्यक्रम के दौरान किसानों को अधिक उपज देने वाली धान की विभिन्न किस्मों, उन्नत उत्पादन तकनीकों और प्राकृतिक खेती तरीकों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने में प्राकृतिक खेती के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर कार्यक्रम में उत्तर और मध्य अंडमान के 40 से अधिक किसानों ने भाग लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दक्षिण अंडमान पुलिस ने युवाओं में स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जिले भर में खेल और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस पहल के तहत पुलिसकर्मियों, स्थानीय युवाओं और सामुदायिक टीमों के बीच वॉलीबॉल और फुटबॉल मैच कराए गए। इसके साथ ही जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें युवाओं को नशे से दूर रखने में खेल

शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया गया। दक्षिण अंडमान पुलिस ने नागरिकों से नशीले पदार्थों से जुड़ी किसी भी जानकारी की सूचना मानस हेल्पलाइन, पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन या व्हाट्सएप नंबर पर देने की अपील की है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के रेड रिबन क्लब की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कॉलेज स्तर पर रेड रन मैराथन 2026 का आयोजन किया गया। मैराथन का उद्देश्य छात्रों में एचआईवी एड्स की रोकथाम, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस अवसर पर अंडमान एवं निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉ सुब्रता साहा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। अपने संबोधन में डॉक्टर साह ने एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता फैलाने और सुरक्षित तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बंबू फ्लैट निवासी के बालाकृष्णन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। के बालाकृष्णन का 31 अगस्त को जीबी पंत अस्पताल में निधन हो गया। वे 55 वर्ष के थे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत के बालाकृष्णन के परियोजनाओं के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में 2 वर्षीय बीएड डिग्री कार्यक्रम की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण की परामर्श 7 सितंबर को होगी। परामर्श सुबह 9:30 बजे महाविद्यालय के सभागार में आयोजित की जाएगी। प्रवेश लेने के इच्छुक सभी पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित समय पर उपस्थित होने की सलाह दी गई है। चयनित उम्मीदवारों को प्रवेश के दिन अपने मूल प्रमाण पत्र, उनकी प्रतियां और निर्धारित शुल्क साथ लाना होगा। जोड़ाकलान स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्री श्री हरिनाम सेवा संघ की ओर से 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव शाम 5:30 बजे से रात 12 बजे तक चलेगा। इस अवसर पर फैंसी ड्रेस, नृत्य, भागवत कथा, धार्मिक गीत और भगवान कृष्ण से संबंधित भजन कीर्तन सहित विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आयोजकों ने आम नागरिकों से महोत्सव में शामिल होने की अपील की है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति समिति सदस्य से मोबाइल नंबर 9679588799 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। चीनी की जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार का बड़ा कदम। व्यापारियों की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की गई। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की पहल से धान की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर। छोलदारी में 40 से अधिक किसानों ने फील्ड डे कार्यक्रम में लिया भाग। और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दक्षिण अंडमान पुलिस ने युवाओं के लिए खेल और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय संध्या के 7:15। अब एक नज़र आज के मौसम के मिजाज पर। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, जबकि मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि खराब मौसम के कारण हवा की रफ्तार 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है, जिसके चलते समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। इसलिए मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ये था आज का मौसम का मिजाज। और अब सुनिए जहाजरानी सेवा निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। एमवी जॉली बॉय परसों 4 सितंबर को सवेरे 7 बजे माय बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा करेगा। जलयान श्री विजयपुरम से चलेगा और 5 सितंबर को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर माय बंदर होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। एमवी सेंटिनल

सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान की यात्रा करेगा और कल ही रात्रि 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कैमल बे परसों 4 सितंबर को रात्रि 9 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए प्रस्थान करेगा और अगले दिन 5 सितंबर को सवेरे 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम पहुंचेगा। एमवी कालीघाट कल सवेरे 7 बजे लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और परसों 4 सितंबर को शाम 4 बजे कार्निकोबार से छूटेगा और लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। इन्हीं जगहों के लिए एमवे कालीघाट की अगली यात्रा होगी श्री विजयपुरम से 7 सितंबर को सवेरे 7 बजे। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा करेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से रवाना होकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा और कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराजदीप की यात्रा पर एमवी बम्बुका कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। कल दिन के 11 बजे एमवी रानी लक्ष्मी श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा और कल ही दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजदीप के लिए छूटेगा। स्वराजदीप से श्री विजयपुरम के लिए इस जलयान की वापसी यात्रा होगी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे। एमवी रंगत कल दिन के 11:30 बजे श्री विजयपुरम से स्वराजदीप की यात्रा करेगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे ये जलयान स्वराजदीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा। शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इस जलयान की रवानगी होगी कल ही दोपहर बाद 3:30 बजे। एमवी कमोटा कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा करेगा और कल शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। स्वराजदीप के लिए एमवी बारटनांग की रवानगी होगी कल शाम 5 बजे। जलयान श्री विजयपुरम से चलेगा और अगले दिन 4 सितंबर को सवेरे 5:30 बजे स्वराजदीप से चलकर ये जलयान शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। ये था जहाजरानी सेवा निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जन सूचनाएं। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों से गैर कानूनी रूप से किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आम लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 03192-240127, 03192-238881 या 1070। सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है 9531888844। प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:20 हुए हैं। सुनते हैं दिल ने फिर याद किया।

अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में ये था साथी फिल्म का गीत। नवाब आरजू के लिखे इस गीत को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

बर का लिखा गीत और कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में। आवाज लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म हिमालय की गोद में फिल्म के इस गीत के साथ ही दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विश्व नारियल दिवस हर वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य नारियल के महत्व और उसके अनेक उपयोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नारियल को जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लगभग सभी भाग उपयोगी होते हैं। नारियल पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शरीर को ठंडक देने वाला होता है। नारियल की गिरी से तेल, मिठाइयाँ और कई खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इसकी जटा से रस्सी, चटाई और अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। नारियल की खेती किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत के समुद्री तटीय क्षेत्रों में नारियल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। नारियल का पेड़ पर्यावरण के लिए भी उपयोगी और प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाता है। विश्व नारियल दिवस हमें नारियल के आर्थिक, स्वास्थ्य वर्धक और पर्यावरणीय महत्व को समझाने का अवसर देता है। हमें नारियल के पेड़ों की रक्षा और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर वर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ जीवन शैली और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर हमें अपने भोजन की गुणवत्ता और पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे भोजन में हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, दालें, अनाज, दूध या उसके विकल्प तथा अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। केवल स्वाद के लिए अधिक तला भुना और पैकेट वाला भोजन खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यह संदेश देता है कि अच्छा पोषण केवल बीमारी से बचने के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है। बच्चों और किशोरों के लिए पौष्टिक भोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके विकास, पढ़ाई और दैनिक कार्यों में मदद मिलती है।

दोस्तों, इस सप्ताह से हमें स्वयं स्वास्थ्य भोजन अपनाने और अपने परिवार तथा मित्रों को भी पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने का संकल्प लेना चाहिए। स्वस्थ भोजन ही स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव है। दोस्तों, आज बुधवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पर्यावरण संरक्षण और युवा। दोस्तों, राहुल 16 वर्ष का एक उत्साही और जिज्ञासु विद्यार्थी था। उसे मोबाइल, क्रिकेट और दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद था, लेकिन पर्यावरण के प्रति वह बिल्कुल गंभीर नहीं था। उसके घर के पास एक छोटा सा पार्क था, जहां कभी हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी दिखाई देते थे। धीरे धीरे लोगों ने वहाँ प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट और कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। कुछ पेड़ भी विकास के नाम पर काट दिए गए। राहुल रोज उस रास्ते से गुजरता, लेकिन कभी ध्यान नहीं देता था। एक दिन विद्यालय में विज्ञान की कक्षा के दौरान अध्यापक ने विद्यार्थियों को बताया कि पेड़ों की कमी, प्रदूषण, जल की बर्बादी और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं में बदलाव लाने की सबसे अधिक शक्ति होती है, क्योंकि वे नई सोच और नई तकनीक को आसानी से अपनाते हैं। यह बात राहुल के मन में घर कर गई। उसने पहली बार अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा और महसूस किया कि समस्या केवल सरकार या किसी संस्था की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

दोस्तों, अगले दिन राहुल ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया और उसका नाम रखा हरित युवा दल। शुरुआत में उनके केवल 5 सदस्य थे, लेकिन उनका उत्साह बहुत बड़ा था। उन्होंने सबसे पहले पार्क की सफाई करने का निर्णय लिया। रविवार को सुबह वे दस्ताने और कूड़ेदान लेकर पार्क पहुंचे और वहां जमा प्लास्टिक तथा अन्य कचरे को अलग अलग किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि गीला और सूखा कचरा अलग रखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने विद्यालय में एक विद्यार्थी एक पौधा अभियान शुरू किया। प्रत्येक विद्यार्थी ने एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लिया। दोस्तों, राहुल ने सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करते हुए छोटे छोटे वीडियो बनाए जिनमें पानी बचाने, बिजली की खपत कम करने, प्लास्टिक से बचने और पेड़ लगाने के सरल उपाय बताए गए। धीरे धीरे अभियान लोकप्रिय होने लगा। शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय लोग भी उनसे जुड़ने लगे। कुछ महीनों में पार्क का रूप बदलने लगा, नए पौधे उगाए और पक्षियों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। राहुल को समझ आया कि एक छोटी पहल

दोस्तों, कुछ समय बाद राहुल के शहर में गर्मी बहुत बढ़ गई, पानी की कमी होने लगी और कई स्थानों पर पेड़ सूखने लगे। हरित युवा दल ने वर्षा जल संचयन के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने विद्यालय की छत से वर्षा के पानी को टंकी में एकत्र करने की योजना बनाई। प्रधानाचार्य ने उनकी योजना को मंजूरी दी और विद्यालय में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की गई। राहुल और उसके साथियों ने पास के गाँव में भी जाकर किसानों से बातचीत की तथा स्थानीय पेड़ों को बचाने और अधिक पौधे लगाने के महत्व को समझाया। उन्होंने यह भी सीखा कि पर्यावरण संरक्षण केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं, ऊर्जा की बचत, जल संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और जिम्मेदारी से उपभोग करना भी उतना ही आवश्यक है। राहुल की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वह प्रकृति को केवल सुंदर दृश्य मानता था, लेकिन अब उसे समझ आया कि मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर है। स्वस्थ पर्यावरण के बिना स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

दोस्तों, एक वर्ष बाद विद्यालय के वार्षिक समारोह में राहुल को पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा कि यह पुरस्कार केवल उसका नहीं बल्कि उन सभी युवाओं का है जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसने अपने साथियों से कहा कि बदलाव के लिए हमेशा किसी बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं होती। एक बोतल को कूड़ेदान में डालना, नल खुला ना छोड़ना, अनावश्यक बिजली बंद करना, पौधे की देखभाल करना और दूसरों को जागरूक करना, ये छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। राहुल की कहानी ने विद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को प्रेरित किया अगले वर्ष तक शहर में कई स्वच्छता अभियान, पौधारोपण कार्यक्रम जैसे जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू हो चुकी थी। राहुल ने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन जीने की जिम्मेदार शैली है। युवाओं के पास ऊर्जा, रचनात्मकता और तकनीक का ज्ञान है। यदि वे

इनका सही उपयोग करें तो वे प्रकृति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उस दिन राहुल ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह जीवन भर प्रकृति की रक्षा के लिए प्रयास करता रहेगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता रहेगा।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत वध फिल्म से। आवाज जगजीत सिंह की।

ये बोलते निदा फाजली के और संगीत विशाल शेखर का था। और अब सुनिए लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में लाल सलाम फिल्म का गीत।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

सलीम बिजनौरी का गीत, दब्बू मलिक का संगीत, फिल्म ये जिंदगी का सफर, आवाज अलका याग्निक की।

आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डेप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के 1-1 पद रिक्त हैं। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हों अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदरगंज एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसके साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: और अब आइए सुनते हैं गौरव गान।

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचारों और अन्य कार्यक्रमों के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली केंद्र की ओर। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमरीका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और

0: बहुपक्षी साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए

0: सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेड कार्ड के आधार पर की जा रही है।
2: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
3: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई

0: पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे की ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र सिक्किम विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll rises to over 1,200, with over 4,000 people still missing. RBI says special US dollar Indian rupee forex swap facility generated over 136 billion US dollar inflows till August 31st. Shri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Max de Wever to arrive in New Delhi tonight on a 3-day visit to India. Talks on trade, defence, technology, energy and connectivity high on agenda. Heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbh and West Uttar Pradesh tomorrow. And India to stage inaugural Women's Champions Trophy in 2027 after Sri Lanka dropped as hosts. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering the fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना वो दौर जब रेशम के धागों और मसालों के काफिले मध्य एशिया के बीहड़ रास्तों से गुजरा करते थे। ताशकंद से बिश्केक तक फैली वो धरती जहां इतिहास के पन्नों ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा। लेकिन आज 21वीं सदी के नक्शे पर वही मध्य एशिया सिर्फ इतिहास की किताब नहीं बल्कि ग्लोबल पावर प्ले का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। ऊर्जा का अकूत खजाना, यूरेनियम के भंडार और भू राजनीति का नया केंद्र, चीन की उठती इमारतें, रूस का पारंपरिक दबदबा और अफगानिस्तान के मुहाने पर सुलगती अशांति, इन तमाम चक्रव्यूहों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक के सरजमी पर। 4 दिनों की ये महायात्रा सिर्फ 2 देशों का दौरा नहीं थी, ये ताशकंद में यूरेनियम की डील से भारत के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को लॉक करने की पटकथा थी। ये बिश्केक से पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अल्टीमेटम था। ये कदम था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से व्यापार के नए रास्ते खोलने का। ये शंखनाद था मध्य एशिया के दिल में भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को एक नए युग में ले जाने का। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे कुछ बड़े सवाल भी हैं। क्या भारत सेंट्रल एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस का नया अध्याय लिख रहा है? क्या ये चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच भारत की अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश है? इन बेहद महत्वपूर्ण सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आनंद।
1: चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से उज्बेकिस्तान के साथ रिश्ते पहुंचे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक। 2030 तक व्यापार को $5 अरब से ज्यादा ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल पेमेंट्स, डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कनेक्टिविटी, यानी सहयोग का दायरा अब सिर्फ कूटनीति की मेज तक सीमित नहीं है। और फिर बिश्केक SCO के मंच से भारत का स्पष्ट संदेश, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। त्रिगुणायत जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला है। चीन और रूस के पारंपरिक प्रभाव वाले इस क्षेत्र में भारत का ये कूटनीतिक कदम सेंट्रल एशिया में पावर बैलेंस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्या लगता है आपको?
3: देखिए आनंद जी, 2012 से हमने अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को स्थापित किया है और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में विजिट किया और उनके साथ में हमारे जो BRICS 5+1 या दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके थ्रू हम सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिश्ते बना पाए और प्रगाढ़ कर पाए, उसमें हमने देखा है कि बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा है कि सेंट्रल एशिया जो है इस वक्त ग्रेट गेम के अंदर में लगा हुआ है। आज की डेट में वहां पर जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस रूस का है वो पुराना है क्योंकि ये सारे कंट्रीज रूस के रिपब्लिक्स थे 1991 से पहले और उसके बाद से चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस वहां पर जियो इकोनॉमिक्स के रूप में उभरा है और रूस और चीन ने बीच में ये एडजस्ट किया है कि जियो पोलिटिकली रशिया अपना स्थापित करता रहेगा लेकिन चीन को जियो इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक एंगेजमेंट के साथ उनको बढ़ावा देते रहेंगे, तो वो दोनों के बीच हो रहा है। तो यूरेशियन कनेक्टिविटी

0: बात वहां पर चल रही है। उधर अमेरिका उनका एक थर्ड नेबर बन के उभरा है, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने भी अपना C5+1 और ये इस तरह के काफी वहां पर कोशिश की है, इसी तरह अजरबैजान और आर्मेनिया में। क्योंकि आज की डेट में जब हम सेंट्रल एशिया को देखते हैं तो सेंट्रल एशिया को कॉकेशस के साथ मिलाकर के देखा जाता है, तो उस सब के अंदर में भी अमेरिका काफी वहां पर है। चौथा कंट्री जो है वो वहां पर है टर्की। टर्की ने अपना वहां पर काफी जो उनका टर्किक लैंग्वेजेस का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है उसके चलते उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी को वहां पर काफी बढ़ाया है। तो ये चारों कंट्रीज और गल्फ के कंट्रीज भी कुछ इन्वॉल्व हैं इस तरह से। मेनली यूरोपियन यूनियन भी काफी वहां पैसा लगा रहा है। आप विश्वास मानेंगे कि आर्मेनिया के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो उस रीजन की सबसे बड़ी एम्बेसी है, और आर्मेनिया के साथ हमारे रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट इस वक्त हुई है वो दो संदर्भ में हुई। एक तो ये कि बायलैटरल है हमारा उज्बेकिस्तान के साथ में, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जैसे आपने कहा कि उसको हमने कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है, जिसका मतलब सिक्योरिटी हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, या न्यूक्लियर डोमेन के अंदर हो गया, डिफेंस में हो गया, ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारी सेंट्रल एशिया के साथ रही है वो है कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी के लिए हमने जो है, जब डायरेक्ट हमारा पाकिस्तान के थ्रू नहीं हो पा रहा, अफगानिस्तान नहीं पहुंच पा रहे, सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच पा रहे थे, तो भारत ने चबहार पोर्ट के जरिए जाना शुरू किया। लेकिन अभी चबहार पोर्ट भी जो है अमेरिका की काटसा सेंक्शंस और आजकल तो बमबारी चल रही वहां पर, तो ये सब करने की वजह से भारत को थोड़ा वहां चबहार पोर्ट में हमारे को कंट्रोल प्रॉब्लम हुई है। उसी के चलते वहां पर जो आपने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, उसमें भी चबहार पोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सारी जो समस्याएं इस वक्त जियो पोलिटिकल कॉन्टेस्टेशन की वजह से, खासतौर से अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके चलते जो है बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं, और उसमें भारत ने कोशिश ये की है कि किस तरह से हम उनको इम्यूनाइज कर पाए उन प्रॉब्लम से, ताकि हमारे बायलैटरल रिलेशंस आगे बढ़ सके। तो वो किस तरह हो सकता है, एक तो एयर कनेक्टिविटी हो गया। अब आप ये देखिए कि अभी प्रधानमंत्री को हमारे जो जाना पड़ा 7.5 घंटे लग गए, जबकि ये 2.5 से 3 घंटे के बीच हमारे कंट्रीज हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जिस तरह का एक अपना नजरिया दिखाता है, हमारे जो दुश्मनी के ताल्लुकात उनके साथ हैं उसके चलते ये समस्या सबसे बड़ी आई। तो मैं समझता हूँ कि काफी सारे एरियाज में बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत बड़ी है। दूसरा, उज्बेकिस्तान भी जो है ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री है, तो उनके जो लीडर हैं शवकत मिर्जियायेव वो भी भारत आएंगे। जब हम भारत इस बार जो है ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा है, तो वो सब उसके अंदर जो ऑल्टरनेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो SCO हो, नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ब्रिक्स है, और बायलैटरली भारत ने पूरी कोशिश की है कि इन सब देशों के साथ मिलकर के किस तरह से हम और आगे बढ़ा सके अपने जो हमारे रिश्ते हैं, हिस्टोरिक और
1: जी
0: सिविलाइजेशनल टाइज है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहां पर भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है। आप अगर जाकर देखें वहां पे कल्चरली लोग जो है
1: जी
0: वो काफी अलाइंड है भारत के साथ। लेकिन इस वक्त में प्रधानमंत्री की विजिट से काफी मैं समझता हूँ एक ये जो रिश्ते हैं और आगे बढ़ेंगे और प्रगाढ़ होंगे।
1: जी प्रोफेसर जोशी, भारत और उज्बेकिस्तान ने 2030 तक आपसी व्यापार को $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान व्यापार
0: अच्छा
1: आंकड़ों को देखते हुए ये लक्ष्य
0: अच्छा
1: कितना व्यावहारिक है, और इसमें फार्मा, आईटी, माइनिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों की क्या भूमिका रहने वाली है आपके नजरिए से?
2: देखिए, ये देखना इस बार बड़ा सुखद रहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान की यात्रा की तो उनको न सिर्फ वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जिस प्रकार के सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स रहे हैं, बहुत लंबे पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उसको जब हम ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं टेंजिबल आउटकम्स में, जब हम दो देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं, तो उसमें व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो उसमें एक जो अभी व्यापार का हम वॉल्यूम दोनों देशों के बीच में देखते हैं वो कम है, उसमें बहुत बड़ी संभावना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को $5 बिलियन तक करने का लक्ष्य रखा है। और हम ये भी ध्यान में रखें कि जब हम उज्बेकिस्तान की ओर देखते हैं तो भारत को क्रिटिकल मिनरल्स और विशेषकर यूरेनियम सप्लाई करने वाला देश है। तो जब हम इस ट्रेड टारगेट को देखते हैं तो फिर इसमें एक प्रिफरेंशियल ट्रेड की बात भी आती है, ताकि कन्वेंशनल जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कट किया जा सके और दोनों ही देशों के जो निवेशक हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको फायदा हो सके। तो एक टारगेट सेट किया गया $5 बिलियन का, प्रिफरेंशियल ट्रेड की बात दोनों देश कर रहे हैं, ताकि जितने भी टैरिफ से जुड़े हुए और नॉन टैरिफ से जुड़े हुए जो बैरियर्स हैं और जो निवेश में जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो जब हम भारत को देखते हैं तो भारत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हुए, व्हीकल ऑटोमोबाइल्स हुआ, उसके पार्ट्स हुए, अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो हुए, मोबाइल फोन्स हुए।

0: ये तमाम और कुछ खाद्य पदार्थ जो है उज्बेकिस्तान को भेजता है। वहीं जब हम उज्बेकिस्तान की ओर नजर डालते हैं तो फल और सब्जियां, फर्टिलाइजर्स, कुछ केमिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें कि यूरेनियम शामिल है, वो भारत को प्रोवाइड कराता है। तो जब हम स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर एक क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक का ऐसा नया क्षेत्र उभर के आता है आनंद, जिसमें विशेषकर एक तो क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में सहयोग को आगे ले जाने की कई गुना व्यापार बढ़ाने की बात की जा रही है, जो भारत और उज्बेकिस्तान दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो जो ये नोवीस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, विशेषकर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और AI है, इसको लेकर के भी दोनों देश और दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बात करते हुए नजर आए। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के जो अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको हमने कल प्रूफ भी किया। हमारी क्वार्टरली ग्रोथ 7.8% की रिकॉर्ड हुई है GDP की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हर्ष का विषय है। और वहीं दूसरी ओर भारत की जो तकनीकी ग्रोथ है उसकी भी उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने तारीफ की थी जब ये बायलेटरल ऑफिशियल टॉक्स हुई। और इसमें फिर मैं कहती हूँ कि न सिर्फ हम सेंट्रल एशिया की ओर, भारत जब अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी एग्जीक्यूट करता है दूसरी तरफ जाकर, तो वहां पर भी जो इंडोनेशिया जैसे देश हैं, फिलीपींस जैसे देश हैं, वो भारत की ओर देखते हैं व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें व्यापार में फिर जो है एक पूरा सामरिक क्षेत्र आ जाता है, जिसमें डिफेंस से जुड़े उपकरण, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें ये तकनीक को लेकर के सहयोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये
1: जी
0: देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान के साथ भी जो व्यापार को 5 बिलियन करने की बात की गई है,
1: जी
0: उसमें जो ये तमाम जो नवाचारी क्षेत्र हैं इनका भी उल्लेख है। इसमें दोनों देश साथ में काम करेंगे, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर, दोनों स्तर पर ये दोनों देशों के लिए और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है।
1: जी त्रिगुणायत जी, जो ताशकंद वार्ता रही उसमें जो सबसे बड़ा टेकअवे रहा वो उज्बेकिस्तान से भारत के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति की रूपरेखा तय होना रहा। भारत की स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस समझौते के रणनीतिक महत्व को आप कैसे आंकते हैं?
2: देखिए, भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा हुआ है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और भारत एक लीडर के रूप में निकला है जहां तक के क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन की बात है, या दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने की बात है। तो भारत ने अपना जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक नया आयाम किया है, उसी तरह से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के इस तरह के इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसी तरह भारत ने अपना लक्ष्य जो है न्यूक्लियर एनर्जी का रखा है, लगभग 100 GW बाय 2047। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसके लिए आपको जो है यूरेनियम की प्राप्ति, उसकी आपूर्ति, लॉन्ग टर्म सप्लाईज, उन सबको करना होता है। अभी हम सिर्फ कजाकिस्तान से खरीदते हैं यूरेनियम, और भारत चूंकि रेडी जैसे अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, और इस वक्त में अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत काफी कुछ चीजों में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में जो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमने साइन किया है येलो केक या जिसको बोलते हुए लेंगे वहां से, तो ये हमारी जो ऊर्जा के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, देखिए इस वक्त हमने देखा है जो ईरान के साथ युद्ध हुआ है उसमें जिस तरह चोक पॉइंट्स हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बाबल मंदब हो, जब उनके बंद होने से एनर्जी सप्लाईज में बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया, ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया, तो ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास है जैसे INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उस सब की वजह से क्या है, आपको अपने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की भी बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो है फोकस किया है कि रिन्यूएबल एनर्जीज को हम कैसे और आगे बढ़ाएं।
1: जी बिल्कुल प्रोफेसर जोशी, भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। हम ये भी जान रहे हैं कि UPI 10 से ज्यादा देशों में इस समय इस्तेमाल हो रहा है। उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक में भारत के फिनटेक और IT सेक्टर के प्रवेश के जो अवसर बन रहे हैं उसे आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या ये भारत की सॉफ्ट पावर का नया हथियार बन रहा है?
0: आनंद, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरी चर्चा में जोड़ दिया, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं आपको हमारे प्रधानमंत्री की पिछली इंडोनेशिया यात्रा की ओर ले जाना चाहूंगी, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खुल के तारीफ की थी, और विशेषकर भारत की इलेक्टोरल सिस्टम और जिस प्रकार से हमने EVMs के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को सहज सरल ट्रांसपेरेंट बनाया, डिजिटाइज किया, उसकी तारीफ करते हुए एक महत्वपूर्ण MOU जो है वो भारत के साथ इंडोनेशिया ने साइन किया। तो इसी प्रकार से आप अपने आसपास के जब तमाम देशों को देखते हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया के देश हो, साउथ एशिया के देश हो, ईस्ट एशिया के देश हो, साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, आज भारत की

0: जो डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है पूरे विश्व में। और 140 करोड़ की आबादी के घने देश को डिजिटाइज करना सरल काम नहीं था आनंद, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। तो चाहे हमारा आधार हो, जो हमारा बायोमेट्रिक और डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, चाहे अपना यूपीआई हो जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, जिसकी वजह से इंस्टेंट जो पेमेंट्स हैं वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स के बीच में और अलग अलग मुद्राओं के बीच में भी संभव है। आज 10 से अधिक देशों में अपना यूपीआई स्वीकार्य है। चाहे अपना डेटा शेयरिंग का डेपा हो, जिससे कि डेटा एम्पावरमेंट को और प्रोटेक्शन को बल मिलता है, या ONDC हो जो कि ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स के लिए, जिसमें कि बायर्स और सेलर्स को ये एप्लीकेशन आपस में जोड़ती है और एक प्राइवेट मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। तो हम फिर इससे जुड़ी हुई अलग अलग जो हमने योजनाएं चलाई, चाहे जनधन हो, आधार हो, मोबाइल फोन से जुड़ी हुई योजनाएं हो, तो इससे हमने दो प्रकार के अकम्पलिशमेंट्स अचीव किए। एक तो हमने अपना जो पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पब्लिक सर्विसेज थी, उनको ट्रांसपेरेंट किया, इजी किया, सीमलेस किया, और इनको हमने डेमोक्रेटाइज किया। ये जन जन तक हमारी योजनाएं और ये तमाम जो पूरा डिजिटाइजेशन था ये पहुंचा। और दूसरा, हमने तमाम इसके माध्यम से जो बेनिफिट हुए वो एक ग्रास रूट लेवल पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचाए। तो ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। और आज भारत अपना जो डीपीआई का ब्लूप्रिंट है उसकी ग्लोबल शेयरिंग कर रहा है। अलग अलग जो देश हैं वो भारत के साथ में ऑफिशियल अग्रीमेंट्स के थ्रू ग्लोबल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के डीपीआई की। ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने भी न सिर्फ फिनटेक को या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि अलग अलग जो तमाम क्षेत्र हैं जो लोगों की सिटीजन्स की आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, या जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए, उससे जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, मेडिकल सर्विसेज और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की यात्रा की थी, तो घाना अफ्रीका में या अर्जेंटीना, ब्राजील को हम लैटिन अमेरिका में देखें, इनको हम अपनी जो हमारा जो ई मेडिसिन संजीवनी की जो सर्विसेज हैं वो
1: जी
0: प्रोवाइड कराते हैं, और जो टेली मेडिसिनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और वहां पर उनकी सर्विसेज को हम ग्रो करा रहे हैं। तो इसी प्रकार के अग्रीमेंट्स हमने इन दो देशों के साथ भी किए हैं क्षेत्रीय स्तर पर।
1: भी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं।
2: त्रिगुणायन जी, इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जो प्रधानमंत्री ने युद्ध को लेकर अपनी बात कही, बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के इकोसिस्टम और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के सख्त संदेश दिया। अफगानिस्तान से सटने वाली मध्य एशियाई सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भारत का ये रुख कितना प्रासंगिक है, जब आप देख रहे हैं कि कई देशों की सीमाएं अस्थिर और अशांत बनी हुई हैं।
3: देखिए आनंद जी, बात ऐसी है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आज 25 साल मना चुका है अपने एनिवर्सरी, उसका मेन जो उद्देश्य था वो था टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, इन चीजों के लिए लड़ना और सिक्योरिटी को बढ़ाना किसी तरह से। उनके कुछ रेड्स टाइप के जो बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उन्होंने। इस पूरे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही जो है टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ना है। भारत अपने आप लड़ रहा है, दुनिया भर में सबको कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स अगर आप रखेंगे तो इस बुराई, इस कुरीति और इस तरह के देशों के साथ में कोई भी वो नहीं कर सकते, उसको सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री ने इस बार फिर कही। और अगले जब 25 साल की बात हो रही है तो उसमें ये बहुत आवश्यक है कि दुनिया जो है अपने ये डबल स्टैंडर्ड्स, खासतौर से मेंबर कंट्रीज जो है वो ना रखें इसमें। तो भारत पूरी तरह से जब तक अपने आप तो लड़ता ही रहेगा टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन दुनिया को ये सबक दे रहा है कि अगर आप इससे नहीं लड़ेंगे तो कल आप इसका शिकार बन सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ईरान युद्ध जो हुआ है, देखिए जितने भी इस तरह के इन्वेजन होते हैं, हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो मदर ऑफ ऑल इवल्स वॉज इन्वेजन ऑफ इराक,
2: जी
3: कि इराक में जब अमेरिका ने अटैक किया था तो उस वक्त के बाद सारा टेररिज्म बढ़ा, आइसिस आया वहां पे, आइसिल आया। अब आप ईरान के अंदर भी उसी तरह का अटैक कर रहे हैं, तो ये जितने भी उनके ग्रुप्स हैं जिनको टेररिस्ट ग्रुप बोला जाता है, 4H, वो सब और ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद में दोबारा से और ज्यादा इस तरह की बात होगी। तो ये जो सारी सीमाओं का बिल्कुल मतलब नहीं रह जाएगा जब नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना बढ़ावा मिलेगा स्टेट्स की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का बड़ा सीधा भाषण था और राष्ट्रपति पुतिन को भी बड़ा सीधा, उन्होंने जब पहली बार वर्ड्स में ये कहा कि एंडलेस वॉर को एंड ऑफ वॉर होना चाहिए, और पहले उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन ईरा वॉर, तो मैं समझता हूँ कि ये बात और उनकी मुलाकात जो है ईरान के राष्ट्रपति से भी हुई, डॉक्टर पदेश क्याल से, और तब भी वो बातें हुई हैं। देखिए जब तक ये युद्ध नहीं रुकेंगे, जब तक

0: देश जो है इस तरह का ये दुभातिया व्यवहार जिसको कहते हैं या डबल स्टैंडर्ड, वो इसमें नहीं छोड़ेंगे। तब तक इन सब लड़ाइयों से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म हो, इनसे लड़ पाना बड़ा मुश्किल है।
1: जी प्रोफेसर जोशी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एससीओ के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी का थ्री पिलर्स वाला विजन दिया। आपसे ये समझना चाहेंगे कि वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध के इस दौर में मध्य एशियाई देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद और संतुलित पार्टनर के रूप में खुद को कैसे स्थापित कर रहा है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है।
2: हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं, जब हम दो देशों के या भारत और किसी संगठन की के संबंधों की चर्चा करते हैं, तो हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारत के लिए कोई भी वो देश या वो संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इस बात की चर्चा भी अवश्य होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस प्रश्न का उत्तर देने में कि भारत किसी क्षेत्रीय संगठन के लिए, भारत किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग संप्रभु देशों के रूप में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, तब जबकि शीत युद्ध समाप्त हुआ, ये तमाम देश अस्तित्व में आए और भारत के साथ बहुत लंबे समय से इनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की प्राकृतिक इनके पास में तमाम रिसोर्सेज हैं, विशेषकर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और जिस तरह की इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको देखते हुए हमने वर्षों से देखा है कि न सिर्फ रशिया के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए ये देश जो है वो जियोपॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे, और वही भारत के साथ भी स्थिति है। लेकिन जब इन देशों के, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, इन देशों के जब हम सेंट्रल एशिया में जा करके व्यवहार को या इन देशों के साथ के पारस्परिक संबंधों को देखते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी का जो रुख है वो एक ट्रांजैक्शनल रुख है इन तमाम देशों के प्रति। और वहीं जब हम भारत को, भारत की कूटनीति को देखते हैं, तो भारत ने विगत 11 से 12 वर्षों में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, विन विन रिलेशनशिप्स को कैसे आगे ले जाते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या किसी भी क्षेत्र की जो क्षेत्रीय अखंडता है, संप्रभुता है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए आप चाहे कनेक्टिविटी की बात करें तो उसमें काम करें, या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें काम करें, या जब आप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को आगे ले जाने की बात करें तो उसकी ओर देखें। तो इस बात का संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार के एससीओ समिट में चीन की मौजूदगी में दिया कि कनेक्टिविटी पर काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी देश की जो संप्रभुता है, विशेषकर उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका सम्मान करते हुए कनेक्टिविटी की दिशा में काम करना चाहिए। और ये अपने आप में चीन को एक बहुत बड़ा संदेश था। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत की जो कूटनीति है वो बहुत सकारात्मक कूटनीति है। भारत न किसी प्रकार का डेट क्राइसिस या डेट डिप्लोमेसी खेलते हुए किसी देश के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है कि उसके किसी भूभाग पर जाकर के कब्जा करे या वहां अपनी प्रेजेंस को असर्ट करे, न भारत इस प्रकार की कूटनीति करता है कि अपने फायदे की या अपने राष्ट्रीय हितों को सिक्योर करने की सोचता है जिसमें कि दूसरे देश का नुकसान हो जाए, न भारत इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करता है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा हो। और आज जो भारत की शक्ति की स्थिति है आनंद, वो हम सभी जानते हैं। कल अपनी आर्थिक शक्ति का तो भारत ने पूरे विश्व को परिचय दे ही दिया, तब जबकि अमेरिका के प्यूनिटिव मेजर्स और तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने चोक कर रखा था, पश्चिम एशिया का संकट बहुत गहराया हुआ था, और बाकी के जो देश है, विशेषकर पश्चिम के जो शक्तिवान देश है, उनका जो जीडीपी ग्रोथ है रेट रहा वो 0.5 से लेकर 2% तक का रहा। हमने अपना जीडीपी इस क्वार्टर का जो रिकॉर्ड किया है वो 7.8% का रिकॉर्ड किया है। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत ऐसा देश है, उसकी कूटनीति ऐसी, इस प्रकार की डायनेमिक कूटनीति है कि वो सभी मंचों पर एक सामंजस्य बना करके काम करता है, ग्लोबल साउथ की आवाज आगे लेकर के जाता है। ये देश जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी बात भारत करता है। भारत यूएनएससी में तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश है उनके नेतृत्व की बात करता है, और भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई की बात करता है। इसके साथ ही भारत अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, कनेक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में साथ में काम करने के लिए, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमीज को इंटैक्ट रखते हुए। तो यहां पर
1: जी
2: भारत इन तमाम देशों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हो जाता है, क्योंकि भारत जैसे देश पर इस प्रकार का भरोसा इन देशों का है कि भारत किसी भी प्रकार की नकारात्मक कूटनीति में ना पड़ते हुए अपने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर काम करता है।
1: जी
2: आना
1: विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी दी। आइए सुनते हैं विदेश सचिव विक्रम।

0: مصری نے اس ملاقات کے بارے میں کیا کہا.
1: The Prime Minister held a bilateral meeting also with the President of Iran, Dr. Pezeshkian. The two leaders dwelt on recent developments in West Asia and developments in the bilateral relationship. And the Prime Minister conveyed to President Pezeshkian how much he was looking forward to welcoming him in New Delhi for the BRICS summit in less than 2 weeks' time.
0: त्रिगुणायर जी, कार्यक्रम अब अपने समापन की तरफ आगे बढ़ रहा है. हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां से कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं उस द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से कि भारत विकसित बनने की राह पर और आगे बढ़ सके. बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री की महायात्रा थी, इसमें कौन से ऐसे पहलू आपको नजर आते हैं जो भारत को विकसित बनाने की तरफ और आगे लेकर जाएंगे?
2: देखिए, भारत हमेशा से विश्वास ये करता है कि अगर हम विकसित हो रहे हैं तो हमारा विकास जो है वो दूसरे जो देश हैं उनके साथ भी उसको साझा किया जा सके. तो जैसा अंशु जी ने बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहें, क्योंकि दुनिया बिल्कुल अब नए ढंग से चल रही है. टेक्नोलॉजी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. सो अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत प्रदान करता है, शेयर करता है दूसरे देशों के साथ में. तो जब हमारी ग्रोथ हो रही है, इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 7.8% क्लॉक किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिश्ते हम बना रहे हैं वो तो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, जनरल सिक्योरिटी है और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, इसमें साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम होती है. या तो हम वहां पे टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स की कोशिश करते हैं, भारत में मेक इन इंडिया की बात करते हैं, किस तरह से विकसित भारत को आगे बढ़ाएं, कैसे वसुधैव कुटुंबकम के जरिए दूसरे देशों को जो ग्लोबल साउथ के हैं उनको फायदा पहुंचाएं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, किसी भी तरह से भारत हमेशा और सब देशों के साथ में उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के लिए हमेशा साथ रहता है. तो मैं जब देखता हूं कि जब हम विकसित 2047 की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं या दूसरे देश हैं जो ग्लोबल साउथ के डिसएडवांटेज कंट्रीज हैं वो भी हमारे जो ग्रोथ है उसका लाभ उठा सके. तो मैं समझता हूँ यही भारत की एक नीति है जिसकी वजह से भारत को लोग एक विश्व मित्र के रूप में देखते हैं.
0: जी, ताशकंद के ऐतिहासिक गलियारों से लेकर बिश्केक की चोटियों तक वक्त का पहिया एक बार फिर घूम चुका है. सदियों पहले जिस रेशम मार्ग पर भारत के ज्ञान, संस्कृति और मसालों की खुशबू महकती थी, आज 21वीं सदी का नया भारत उसी धरती पर अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अटूट सामरिक पहचान का परचम लहरा रहा है. उज्बेकिस्तान में मिला प्रधानमंत्री को सम्मान सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि एक कूटनीतिक जीत भी नहीं है, बल्कि मध्य एशिया के दिल में भारत के बढ़ते विश्वास की वो मुहर है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए त्रिगुणायर जी आपका, प्रोफेसर जोशी आपका और हमारे श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार.
3: नमस्कार.
4: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
5: चर्चा का विषय है.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10:01 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम सरगम। कार्यक्रम का यह पहला गीत डुप्लीकेट फिल्म से। गायक है उदित नारायण और अलका याग्निक। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

समीर के गीत और नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में आप सुनिए साजन चले ससुराल फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

अगली बोल समीर के हैं और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू। फिल्म का नाम है फूल और कांटे।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म प्रेम कैदी के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं और अब चलते चलते मौसम पर एक नज़र। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, जबकि मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि खराब मौसम के कारण हवा की रफ्तार 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है, जिसके चलते समुद्र काफी अशांत रहेगा। इसलिए मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10:31 और 18 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्स विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

This is mic number 1. Time here is 4 hours 33 minutes seconds 19, 20, 21, 22, 23.

Mic number 2, time here is 4 hours, 35 minutes, seconds, 56.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 12वीं तिथि अर्थात 3 सितंबर 2026। इस समय प्रातः के 5:26 हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। अनमोल विचार।
1: समय किसी के लिए नहीं रुकता, बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल का सही उपयोग करना ही समझदारी है। सफलता पाने वाले लोग समय की कीमत समझते हैं और आज के काम को कल पर नहीं डालते। याद रखिए, समय हमारा इंतजार नहीं करता, लेकिन हम समय का सदुपयोग करके अपने भविष्य को जरूर बेहतर बना सकते हैं।
0: ये था आज का अनमोल विचार, और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।